91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

2 MHz पर AI तुम्हा सारिया दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं या तुम्हा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओ कर दे ना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। तुम्हा सारे इं बनी रिया रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हमें अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो कुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

समझाने दो।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अरे जा,
1: मेरे पीछे है दीवाने, आगे आगे मत पता ने मुझे देख के दिल को हारे प्यारे।
2: दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए
1: सच।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका देगा साथ, ट्रंप का कहना ईरान से डील कल संभव, शर्तें न मानी तो फिर बरसाएंगे बम, मांगे नहीं मानी तो 25 जून से थम सकते हैं बसों के पहिए। वन विभाग पहली बार अपनी नर्सरी में तैयार करेगा कचनार के पौधे। अब समाचार विस्तार से।

11 केवी बरवाला फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बागनी, झियोल, बरवाला, आधुनिक स्कूल छैंटी तथा बरेह में 20 जून को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 33/11 केवी सबस्टेशन शाहपुर और 33/11 केवी सबस्टेशन दरीनी के तहत आने वाले क्षेत्रों रैत, प्री, भागड़ू, बसनूर, शाहपुर, मछियार, झंगी, डोहव, क्यारी और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 9 बजे से 5:30 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा के प्रावधान होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच डील शुक्रवार को हो सकती है। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात के दौरान उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमरीका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर बम बरसाएंगे। HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन का कहना है कि आंदोलन 24 जून तक जो है वो जारी रहेगा। चेतावनी दी गई है कि यदि 24 जून तक कोई समाधान नहीं निकला तो 24 जून को रात 12 बजे के बाद प्रदेश भर में HRTC चालक परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे 25 जून से प्रदेश भर में HRTC बसों के पहिए थम सकते हैं। वन विभाग अपनी नर्सरी में कचनार के पौधे तैयार करेगा। कचनार अपनी पारिस्थितिक, औषधीय और जैव विविधता संबंधी महत्ता के लिए जाना जाता है। ये पौधा प्रदेश के हर जिला में होता है। अभी तक प्राकृतिक रूप से ही जंगलों में उगता है। इसके औषधीय गुणों को देखते हुए विभाग इसकी नर्सरी तैयार करेगा और लोगों को पौधे लगाने के लिए भी दिए जाएंगे। कचनार के बाजार में अच्छी कीमत मिलती है और उसे सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है। पेपर लीक विवाद के बाद नीट UG की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ केंद्र व राज्य सरकारों ने पूरी सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। हालांकि परीक्षा में अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन इसके बावजूद NTA ने अपने पूरा तैयारी कर ली है, जो न सिर्फ परीक्षा से जुड़ी किसी तरह की झूठी जानकारी पर पैनी नजर रख रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की धरपकड़ में भी जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। 1-8 जिलों में छोटे अध्ययन में प्रदेश के संधारियों में इस बीमारी का व्यापक संक्रमण पाया गया है। शोधकर्ताओं ने 96 नमूनों में से 38.5% में स्क्रब टाइफस पैदा करने वाले जीवाणु का DNA पाया है। एक्सक्लूसिव चौंकाने वाली बात ये है कि राज्य में 15 नई जिगरमाइट प्रजातियां भी पहली बार मिली हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन 15 में से एक प्रजाति है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टॉस नदी पर प्रस्तावित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को अब नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। करीब 86 वर्ष पुरानी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। परियोजना से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिलों के 2092 लोग प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार प्रभावित 8 गाँव में से 6 गाँव सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल और 2 गाँव शिमला जिले में स्थित है। परियोजना के वर्तमान स्वरूप के अनुसार टॉस नदी पर 236 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता
660 मेगावाट होगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गणना 15 जुलाई तक पूरी की जानी है। इस प्रक्रिया को सुचारू और सटीक बनाने के लिए जनगणना अधिकारियों को राजस्व विभाग के कानूनों और पटवारियों की मदद लेने की अनुमति दी गई है। जनगणना कार्य के दौरान यदि किसी क्षेत्र की सीमा, राजस्व रिकॉर्ड या गांव की भौगोलिक स्थिति को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है तो संबंधित कानूनों और पटवारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध क्षेत्र के सीमा पर संशय होने पर कानून को पटवारी जानकारी कराएंगे उपलब्ध। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहले भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच के बाद अब घरेलू क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। यहां सीनियर अंतर जिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की अहम मुकाबले खेले जाएंगे। यहां प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले 24 जून को जबकि फाइनल मुकाबला 25 जून को खेला जाएगा। सीनियर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग चरण के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। फूल ए से शिमला और मंडी की टीमों ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। भारत के रणनीतिक भंडार देश के कुल क्रूड जरूरत का सिर्फ 9 से 10 दिनों तक ही सहारा दे सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक मंच काउंसिल ऑन एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार तेल आयात और अत्यधिक निर्भरता के बावजूद भारत का भंडार जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। इन देशों में 200 दिनों से अधिक की जरूरत के बराबर रणनीतिक भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के मसरूर हमल सड़क पर छतरूर के निकट गत रात्रि हुई सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या में यौन संचारित रोगों की व्यापकता, जोखिम कारकों एवं उपचार खोज व्यवहार विशेष शोध अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा ने जारी किया। जिला चंबा, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति के 3000 प्रतिभागियों पर आधारित इस अध्ययन में जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोगों से संबंधित लक्षणों, जागरूकता, जोखिम कारकों एवं उपचार प्राप्त करने के व्यवहार का आकलन किया गया है। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और ज़रूर कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार होगा 9 बजने का, यानी कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, आपका इंतज़ार अब होता है ख़त्म, क्योंकि 9 बज चुके हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला शुरू हो गया है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आपको रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 घंटे का ये सफ़र हम बिताते हैं आपके साथ और आप बिताते हैं हमारे साथ। हम बहुत सारी बातें आज कार्यक्रम में करने वाले हैं और साथ ही आपका मनोरंजन भी ज़रूर इस कार्यक्रम में करवाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन प्यारी सी लाइनों के साथ, यानी कि एक बहुत अच्छे विचार के साथ। हर सुबह ये अवसर देती है कि आप कल से बेहतर निर्णय ले सकें, बिल्कुल, और हमें भी ये अवसर मिल गया है। तो श्रोताओं, ज़रूर आप भी आज ऐसे निर्णय लीजिए जिससे कि आपका आने वाला समय और बेहतर बन सके। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम को आप सभी सुन रहे हैं आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है बहारों के सपने फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।
1: गोरे भैया तो बीमार तू, इसलिए तू

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, ऐसे ही बहुत सारे गीत आज कार्यक्रम में आपको सुनवाए जाएंगे, और हमेशा की तरह फिर से कहेंगे कि गीतों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी, तो चलते हैं मौसम की जानकारी की और आंखों देखा हाल या फील किया हुआ हाल अगर आपको बता दिया जाए तो धर्मशाला में इस समय मौसम ठीक है, धूप खिली हुई है और हल्के से बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो धर्मशाला की ही अगर हम बात करें तो आज का अधिकतम तापमान जो है वो बना हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हवा में नमी की बात करें तो 83% हवा में नमी बनी हुई है। श्रोताओं, आजकल के इस मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते। अभी अगर मौसम ख़राब है तो कुछ ही पलों में बहुत तेज़ धूप निकल आएगी, और अगर धूप खिली है तो कब बादल आ जाए, कब बरसात शुरू हो जाए पता नहीं। इसलिए हम यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बदलता मौसम कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव उसमें देखने को मिलता है। तो श्रोताओं, अपना ख्याल रखिए और बदलते मौसम का भी आप इंजॉय कीजिए। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के दिन की, यानी कि 19 जून की। तो आज 19 जून है और शुक्रवार का दिन है। कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार जो है वो और ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा संडे का। बिल्कुल श्रोताओं, संडे का इंतज़ार हम सभी को इसलिए होता है कि हम जल्दी से जल्दी उस दिन का इंतज़ार करते हैं जिसमें हम आराम करें और अपने पसंद के काम करें। तो श्रोताओं, बिल्कुल शुक्रवार आज है और कल का दिन शनिवार है और फिर संडे। तो श्रोताओं, एंजॉय कीजिए हर दिन को, काम के साथ भी हम दिन को एंजॉय कर सकते हैं, और कार्यक्रम को फ़िलहाल के लिए हम एंजॉय करेंगे एक और खूबसूरत से गीत के साथ। हाफ गर्लफ्रेंड, इस फिल्म का गीत श्रोताओं आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज़ में।

बड़ा रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में 9:20 का समय रहता है समाचारों का, और समाचारों के लिए अभी समय बाकी है। समाचारों के बाद हम ज़रूर बात करेंगे इतिहास पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए फिर से कार्यक्रम में रुकेंगे और आपको सुनवाएंगे एक और कार्यक्रम में प्यारा सा गीत, दिल्ली का ठग इस फिल्म का नाम है जिसका गीत अभी आप सुनने जा रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला जिला की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की। और केलंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की

0: प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद देना है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 तक, वहीं नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। शिमला जिला में नशे विशेषकर चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान 441 पंचायतों में शुरू किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चिट्टा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर युवाओं को नशे के खिलाफ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक जिला में मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा 159 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मंडी जिला व ऊना जिला में सघन नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान टास्क फोर्स की टीम द्वारा मंडी में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 4 किलो 850 ग्राम चरस बरामद की गई है। मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर ऊना जिला में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक अन्य कार से 25 किलो से अधिक पोस्त चूरा बरामद कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन ब्रागटा ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एक बागवान से केवल 100 बोरी खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम की मार और विभिन्न बीमारियों के चलते बी ग्रेड सेब की मात्रा हर वर्ष लगातार बढ़ रही है और बागवान ऐसे सेबों की बिक्री के लिए HPMC पर ही पूर्णतया निर्भर है। ऐसे में 100 बोरी की लिमिट लगाना बागवानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
2: 2023 की आपदाई, 2025 की आपदाई, रोडे टूटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है सामान नहीं पहुंचा पाए मंडियों तक, लगातार जो डेटोरेशन हुई क्रॉप की वो हुई, उसके अलावा ऑल्टरनेरी आया, पतझड़ हुआ, जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी वो बागवानों को नहीं आया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर साल नई नई आ रही है। जब क्वालिटी डेटोरेट होती है या क्वांटिटी डेटोरेट होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हिमफेड और HPMC हमारे से बागवानों से बोरियां खरीदा करता था, सेब खरीदा करता था, जो हम मंडियों में नहीं बेच सकते हैं, उसको आप कैसे फोर्सी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लिया। भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको रोल बैक किया जाए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के केलोंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें देश भर से इतिहासकारों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने भारतीय इतिहास के तथ्य आधारित लेखन पर बल देते हुए जनजातीय समाज व संस्कृति के संकलन को महत्वपूर्ण बताया। सेमिनार में लाहौल के इतिहास और प्राचीन कला से जुड़े कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। चंबा जिला की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। मेले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व भाईचारे का प्रतीक है। मेले के मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इस वर्ष भी कई कदम उठाने का फैसला लिया गया है। मिंजर मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक को पेश करने तथा हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान करने का भी निर्णय हुआ है। मेले के आयोजन के लिए चौगान का प्रयोग करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया है और अनुमति मिलते ही चौगान की नीलामी कर आगामी प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश महिला आयोग द्वारा महिलाओं को भूमि स्वामित्व के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कांगड़ा में महिला अधिकारों पर आयोजित एक कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भूमि और संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर का भी आधार है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने चंबा में सड़क दुर्घटना की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है। चंबा में खाई में गिरी गाड़ी, परिवार की 6 सदस्यों सहित 7 की मौत। बिजली उपभोक्ताओं पर एक नया बोझ, 33.8 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लागू, अमर उजाला की एक खबर है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। हिमाचल दस्तक के मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी, अगले 5 वर्षों में प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 19 से राज्य बारिश को तरसे, 7 में तो 60% तक की कमी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, मनाली में बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

शिमला जिला की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 100 बोरी सेब खरीद

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। समाचारों के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर से सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे हम लेकर आए हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और श्रोताओं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ शांति हो, सुकून हो, और वहाँ से जब हम वापस अपने घर यानी कि अपने शहर आते हैं और भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, अपने काम धंधों में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अपना पर्सनल बताऊँ तो 2-3 दिन से मैं कहीं बाहर थी, यानी कि मंडी हम लोग गए हुए थे, हमारा एक ट्रिप बना था और वहाँ शिकारी माता और कमरू नाग देवता के यहाँ हम गए। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो जो रास्ता था वो कठिन ज़रूर था, इतना कठिन भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहाँ ना आपको गाड़ी मिलेगी, ना आपका मोबाइल का सिग्नल होगा और ना ही आपको किसी बात की चिंता होगी। बस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बहुत सुंदर देखने वाला नज़ारा था और वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। श्रोताओं, ऐसी जगह पहुंचकर हमें लगता है कि सच में अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है। और शहरों में अगर हम निकल आए तो चारों तरफ ट्रैफिक, चारों तरफ भीड़ भाड़ वाला माहौल, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कहीं वहीं पर अपनी दुनिया बसा ली जाए। श्रोताओं, वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, वहाँ पर सुविधा साधन बहुत कम होने के बावजूद भी वहाँ के लोग इतने खुश मिजाज थे और इतने अच्छे, हर किसी का साथ देने वाले। वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ की हर चीज़ इतनी पाक और साफ़ थी कि मन करता था वहीं रुक जाएं। तो श्रोताओं, अगर आप लोगों का कभी प्लान बने तो आप लोग ज़रूर जाएं, ऐसी वादियों को निहारें और ऐसे मौसम का आनंद ज़रूर लें और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें और ऐसी जगहों पर जाकर सच में मन की शांति और सुकून मिलता है। साथ ही श्रोताओं, सफ़र जब अच्छे लोगों के साथ बीते तो बहुत अच्छा जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथ गए थे बहुत अच्छे लोग थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे की हेल्प करने वाले थे। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल पूरा साथ देते थे, चाहे उन्हें अपने आपके साथ चलना पड़े वो साथ जाते थे। तो श्रोताओं, ऐसे लोगों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे लोगों का होना भी धरती

बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आजकल हम सभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने का हमारे पास समय नहीं है। साथी श्रोताओं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कार्यक्रम में, कि उम्र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर है। हम उम्र के हिसाब से अपनी ताकत को आज़माते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये बात गलत साबित हुई। वो कैसे और क्यों मैं ये कह रही हूँ ये आपको ज़रूर कार्यक्रम में बताऊँगी। तो श्रोता, हम बातों को थोड़ा सा रोकते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में प्यारे से गीत की ओर। सैनिक फिल्म का गीत अब आप सुनने जा रहे हैं श्रोताओं, कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और जैसे कि हमने बात की थी कि हम रोज़ाना हर दिन के इतिहास के बारे में आपके साथ बातचीत करते हैं, और आज है 19 जून। 19 जून का दिन भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। क्यों हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं थी, उसके बारे में आपके साथ करेंगे हम बातचीत। सबसे पहले श्रोताओं, हम चलते हैं 1865 में। आज ही के दिन श्रोताओं, टेक्सास के गैल्वेस्टन में संघ के सैनिकों ने जनरल ऑर्डर नंबर 3 पढ़ा, जिससे राज्य में सभी गुलाम बनाए गए, लोगों को आज़ादी मिली। ये दिन अमेरिका में जून टीथ या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1885 की बात करें श्रोताओं, तो आज ही के दिन फ्रांस द्वारा अमेरिका को मित्रता के प्रतीक के रूप में दी गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का 151 फुट ऊंचा ढांचा समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क हार्बर में पहुंचाया गया। साथ ही 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई। और श्रोताओं, 1999 की बात करें तो आज ही के दिन केरल की एलडीएफ सरकार ने सीबीआई द्वारा बंद किए गए बहुचर्चित इसरो जासूसी मामले को फिर से खोलने का फैसला लिया था। और श्रोताओं, आज के दिन महत्वपूर्ण दिवस कौन से मनाए जाते हैं उसकी बात करें तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ये दिन सिकल सेल रोग यानी कि आनुवांशिक रक्त विकार के लक्षणों और निदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम में ज़रूर हम इस बारे पर भी बातचीत करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी इतिहास की कुछ बातें, कुछ घटनाएं, और अब कार्यक्रम में हम रुकेंगे यहीं पर और आगे बढ़ेंगे, आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में अगला गीत हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से, और आवाज़ रहेगी श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, इस गीत के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और इस कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और साथ ही बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी हों उन्हें भी आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहता है। तो चलते हैं, लेते हैं कुछ एक जानकारियाँ। 211 kV बरवाला फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बागनी, झोल, बरवाला, आधुनिक स्कूल छैंटी तथा मरेह में 20 जून को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। और श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल से सजेगा देहरा नेठी रैत मेला। बिल्कुल, मेलों की बात की जाए तो मेलों का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि कहाँ है मेला भाई, हम भी जाएंगे। तो आपको बता दें, देहरा नेठी रैत का 230 वर्षीय ऐतिहासिक 2 दिवसीय मेला इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरीय घोषित किया गया है। परंपरागत तिथि के अनुसार ये मेला 20 और 21 जून को आयोजित किया जाएगा। 20 जून की रात्रि में परंपरागत पूजन, भजन, कीर्तन तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्रोताओं, 21 जून को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विश्व शांति और जन कल्याण के लिए शांति हवन की पूर्ण आहुति के साथ जिला स्तरीय मेले का विधिवत शुभारम्भ होगा। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ जो कि आप तक पहुँचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। जानकारियों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से आपको पता है हम करवाते हैं आपका मनोरंजन। तो चलते हैं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे एक और प्यारे से गीत के साथ। दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे वापस कार्यक्रम में, और आप सभी भी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे घूमने फिरने की और घूमने फिरने का मौका मुझे मिला और मैं गई थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्रोताओं वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण और वहाँ की हरियाली। बिल्कुल श्रोताओं, और बातों बातों में मैंने आपसे ये भी कहा था कि उम्र जो है वो जस्ट अ नंबर होता है। वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे साथ एक 80 वर्षीय आंटी जो हैं वो भी गए थे और ऐसी चढ़ाई जिसे देखकर शायद हम लोग घबरा जाएं कि कौन ऐसी चढ़ाई, वो भी शॉर्टकट अगर हम लेंगे तो जंगल में से जाना पड़ेगा और ऐसे रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन श्रोताओं, हमें पहले लगा कि वो आंटी वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे और क्यों वो इस उम्र में यहाँ आ गए, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रोताओं, जब भी हम पहाड़ियों पर जाते हैं कहीं भी तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। लेकिन उन आंटी को देखकर सच में एक हिम्मत मिली, एक ताकत मिली और एक ये कह सकते हैं कि हमें एक शिक्षा भी मिली कि हम लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं लेकिन समझना नहीं चाहिए। और जब हमने आंटी से पूछा कि आंटी क्या ये चढ़ाई आप चढ़ लोगे, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा बिल्कुल चढ़ लूँगी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच बताऊँ तो उन्होंने वो चढ़ाई इतने आराम से चढ़ी कि जैसे कोई 35-40 ईयर्स का कोई इंसान उस चढ़ाई को चढ़ता है। तो श्रोताओं, कभी भी हमें बालों की सफ़ेदी पर या उम्र पर नहीं जाना चाहिए, हमें हम पर अपने आप खुद पर विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और उनसे बातों बातों में पता चला कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है और सिर्फ हल्की फुल्की घुटनों की दर्द की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल फिट है। तो श्रोताओं, कहने का अर्थ यही है कि हमें भी अपने आप को फिट रखना चाहिए और अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए। अपना खान पान बिल्कुल सही होना चाहिए और हम कई बार सोचते हैं कि हम अपने शरीर को जितना आराम देंगे हमारा शरीर उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ये गलत धारणा है, गलत सोच है। अपने शरीर को हम जितना कष्ट देंगे, कष्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को दर्द देंगे, थोड़ा सा उससे अगर हम वर्जिश करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा। श्रोताओं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हम जब चढ़ाई चढ़ते हैं बहुत दिनों बाद तो हमारा सांस एकदम से फूलने लग पड़ता है, लेकिन अगर हम डेली एक रूटीन बना लें कि हम इस रास्ते पर या इस चढ़ाई पर रोज़ चलेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी दिल की धड़कन जो एकदम से तेज़ हो जाती थी वो थम जाती है या हल्की हो जाती है और आपको वो जो भारीपन लगता है, वो जो थकावट होती है वो भी कम होती चली जाती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि अपने आप को फिट रखने के लिए आपको थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा सैर सपाटा ज़रूर करना चाहिए। और जब हम सोच लेते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा तो वो काम हमसे कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही श्रोताओं, गीतों की बात हम करें तो गीतों की बात हम करते आए हैं कि हर इंसान को गीतों के साथ जुड़े रहना चाहिए। जब हमारे पास कोई नहीं होता तो ये गीत ही हैं जो हमारा सहारा बनते हैं, हमारा मनोरंजन करवाते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और हम भी जब सफ़र पर जाते हैं और ऐसे प्यारे प्यारे गीत हमें सुनने को मिल जाएं तो हमारे जो पैर हैं वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। चाहे हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए खड़े होने लायक ही, चाहे हमारे पैर झूमे ना झूमे, लेकिन हम हाथों को हिला लेंगे और नाच लेंगे। श्रोताओं, ऐसे ही हमारी जब हम ट्रिप पर गए तो वहाँ बात हुई थी तो गीतों के बारे में बात चली और मैंने पूछा कि आप लोग क्या रेडियो से जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर में कईयों के घर में क्या कईयों की जो दुकानदार हैं वो सुबह से लेकर शाम तक रेडियो उनकी दुकान पर या घर पर ऑन रहता है। और उन्हें गीतों की पसंद नापसंद की बात हुई तो जब हमारी पसंद का गीत आता है तो हम वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं और जब हमारी पसंद का गीत ना हो तो हम वॉल्यूम को कम कर लेते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो श्रोताओं, गीत अपनी पसंद के होते हैं लेकिन गीतों के साथ जुड़ा रहना ही बहुत बड़ी बात है। गीतों के साथ जुड़े रहिए और इंजॉय कीजिए अपनी इस लाइफ को। बिल्कुल श्रोताओं, और इसीलिए हम प्यारे प्यारे गीतों को कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। और गीतों के साथ झूमने का मन करे तो वो भी झूम लेना चाहिए। हम कई बार शर्म करते हैं कि कौन झूमे, मन तो करता है कि हमें कोई उठाए और नचाए लेकिन हम शर्म शर्म में बैठे रह जाते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप भी शर्म करते हैं श्रोताओं तो बिल्कुल शर्म ना कीजिए। गीतों के साथ अगर आपका थिरकने का मन करे, गुनगुनाने का मन करे तो बेझिझक गुनगुनाइए और
झूम लीजिए। तो चलिए कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत। ये गीत आ रहा है प्यासा सावन फिल्म से। श्रोताओं, आवाजें रहेंगी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सभी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, कुछ एक जानकारियाँ और कुछ एक बातों के साथ आपके साथ हुए ले जाएंगे। तो श्रोताओं, चलते हैं एक जानकारी की, और आपको बता दें कि सामान्य रख रखाव कार्य के कारण 33/11 के वी सब सेंटर सब स्टेशन शाहपुर और 33/11 के वी सब स्टेशन द्रीणी के तहत आने वाले क्षेत्रों रैत प्रेई बागड़ू बसनूर शाहपुर मझियार चंगी डोबर क्यारी संज और हरनेरा बंडज और 39 मील आईटीआई द्रमण छतड़ी सियुंता बनियार रेलू पलवाड़ा दरगेला बोरू सारला मनोह गोरडा बनाला द्रीणी बो

जिसके लिए थोड़ा सा अगर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े तो करना भी चाहिए। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि कार्यक्रम में हमने बात की थी, 19 जून यानी कि आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्यतः गोल आकार की बजाय दराती के आकार की हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है और रोगी को दर्द, कमजोरी, एनीमिया तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिवस का उद्देश्य श्रोताओं, लोगों को इस बीमारी के लक्षणों, कारणों और समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी देना होता है। जागरूकता और प्रारंभिक जांच से इस बीमारी के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि सही जानकारी, नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार से सिकल सेल रोग से प्रभावित लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। श्रोताओं, इस अवसर पर हम सभी रक्त संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूक बनना चाहिए और दूसरों को भी हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल श्रोताओं, और इस जानकारी के बाद और बातचीत के बाद कार्यक्रम में अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, कश्मीर की कली। इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में। लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोता, और आपको हम बता दें कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आपको सुनवाते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ी सी बात हम करेंगे अपने पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण पर हम आए दिन बात करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो इस बात को समझते ही नहीं है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। श्रोताओं, आज के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में कूड़ा लेने के लिए हमारे भाई बहन आते ना हों। उनकी ड्यूटी होती है, वो हमारे गेट तक आते हैं और अब हमारा कूड़ा लेकर जाते हैं। लेकिन कई बहुत समझदार कह सकते हैं उन लोगों को कि अपना घर का कूड़ा जो है वो बैग में डालकर चुपचाप से यहाँ वहाँ देखते हैं कि कोई देख नहीं रहा, और कहीं भी जगह मिलती है वहाँ रख कर चले जाते हैं। तो श्रोताओं, उसके बाद होता क्या है कि जंगली जानवर कुत्ते हो गए तो वो लोग जो है वो उस कूड़े तक पहुंच जाते हैं और उन्हें बिखेर कर चले जाते हैं। अब आप तो कूड़ा अपना रख कर चले गए, लेकिन वो जो कूड़ा बिखर गया उसकी वजह से जो गंदगी हुई उसे कौन उठाएगा या कौन देखेगा। खैर, उठाने के लिए तो फिर भी जिन्होंने आना है वो उठा ही लेंगे, लेकिन एक बात सोचने वाली है श्रोताओं, जब हम यहाँ वहाँ देखते हैं ना कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, उस समय हमें अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। हमारी अंतरात्मा हमें देख रही है, और कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। आज के हमारे छोटे छोटे ये जो कर्म हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बनते हैं, और उनका फल भी फिर हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो श्रोताओं, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, उसे साफ़ सुथरा रखना। हम छोटे छोटे बच्चों को छोटी उम्र में ही अगर आदत डालेंगे कि कोई भी कचरा, चाहे हमारे घर का ही कचरा है, बच्चे पढ़ते हैं एक छोटा सा पेपर होता है वो भी उठा के कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, उसी समय हमें बच्चों को टोकना चाहिए कि डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए, और घर से ही बच्चा सीखता है। श्रोताओं, आदत का नाम ही आदत इसलिए है क्योंकि वो बार बार करने के बाद, काम करने के बाद वो एक हैबिट हमारे अंदर आ जाती है, और ना चाहते हुए भी वो आदत हमें इतनी आ जाती है कि अगर हमें पता है कि ये कूड़ा डस्टबिन में डालना है तो हाथ खुद ब खुद डस्टबिन की ओर जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं, अगर हम ये सोचेंगे हमें कोई देख नहीं रहा है, हमारा घर साफ़ सुथरा है, बाहर नालियाँ गंदी हैं होती रहे, पड़ोस गंदा है होता रहे, तो ये सोच ही तो है जो हमें बदलनी है। तो अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, पर्यावरण पर बिल्कुल फोकस कीजिए, और पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने का भी प्रयास कीजिए। बात रही कहीं घूमने फिरने जाने की, श्रोताओं जब हम बाहर कहीं जाते हैं, खास करके हिल स्टेशन में, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जहाँ मैं गई थी बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही साफ़ और सुथरी जगह थी। साफ़ सुथरी क्यों थी? क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और अपने पर्यावरण को, अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखना जानते हैं। लेकिन हम घूमने फिरने जब भी जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम आए, हम दोबारा तो आएंगे नहीं, हमारा तो ये जगह ही नहीं है, ये शहर हमारा नहीं, ये गाँव हमारा नहीं है, तो इसकी स्वच्छता का हम क्यों ख्याल रखें? यही तो सोच है श्रोताओं, अगर ये छोटी सी सोच हम सब बदल लें तो मोहल्ला क्या, गांव क्या, घर क्या, पूरा देश प्रदेश ना बदल जाए। बिल्कुल, सोच को ही तो बदलना है। तो श्रोताओं, आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी भी अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा ना कीजिए, कूड़ा सही जगह पर पहुंचाने में अपना सहयोग ज़रूर दें। और अगर आप कहीं मंदिर में और ऐसी पाक जगह जाते हैं तो वहाँ पर भी स्वच्छता का खास ख्याल बनाए रखें। खास करके हम कहना चाहेंगे अपनी महिलाएं जो श्रोता हैं हमारी, उनसे हम ये कहेंगे कि हम लोग जब भी ऐसी जगह जाते हैं तो खास सफाई का ध्यान रखें, और अगर आप नहीं जाने वाले हैं तो वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो गंद पड़ता है, जो गंदगी पड़ती है वो बहुत गंदी लगती है। काम एक इंसान करता है लेकिन सुनना और शर्मिंदा सबको होना पड़ता है। कार्यक्रम के माध्यम से ये जानकारी, ये एक सुझाव आप तक पहुँचाया है, और हमें उम्मीद है हमारे श्रोता हमारी बातों को ज़रूर सुनते हैं और मानते भी हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात को यही रोकते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में अगले प्यारे से गीत की ओर। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को जिसे हम लेकर आए हैं खानदानी सफा खाना फिल्म से, और आवाज़ें हैं जुबीन नौटियाल और तुलसी कुमार की। तो श्रोताओं, इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने रेडियो सेट पर।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोता हूँ और इस गीत के बाद कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ करेंगे अब एक खास बात, या क्या यूँ कह लीजिए जानकारी। कवि मुखिया पर्यटन नक्शे से लगभग बाहर रहने वाला धर्मशाला का खनियारा क्षेत्र अब धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना रहा है। श्रोताओं, धौलाधार की तलहटी से में बसा ये क्षेत्र आज पर्यटकों के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी आकर्षित कर रहा है और लोग जो हैं यहाँ बहुत दूर दूर से पहुँच रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह पंजाबी गायक बब्बू मान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य यहां पहुंचे हैं, उसने खनियारा को नई पहचान दिलाई है। खनियारा स्थित मनोनी खड़ और इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय पहले पंजाबी गायक बब्बू मान के यहाँ पहुँचने और बाद में अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान स्थान का उल्लेख करने के बाद इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी खनियारा खड़ोता और लुंगटा की तस्वीरें और वीडियो तेज़ी से साझा किए जाने लगे हैं। हाल ही दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सितारे यहां पहुंचे थे। साथ ही आप सबको बता दें श्रोताओं, इस जगह को बहुत कम लोग जो है वो जानते थे। खैर, जो लोकल लोग हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो बाहर से आने वाले होते हैं उन्हें नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्थानों का पता होता है, वहीं जाकर वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो है हाईलाइट होती हैं तो लोगों तक जानकारी पहुँचती है और लोगों की रीच उस क्षेत्र तक पहुँचती है। श्रोताओं, बहुत अच्छी बात है कि पर्यटक जो है वो आते हैं और मौसम का और इन स्थानों का आनंद लेते हैं। फिर से वही बात कहेंगे कि घूमने फिरने जाइए, ये जो खड़ और नाले हैं, ये जो वातावरण है, ये जो प्रकृति है हमारी अपनी है, इसे संभालिए, संजो कर रखिए। और साथ ही श्रोताओं, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जून महीना जो है अब ख़त्म होने पर ही है और जुलाई का जो मंथ है वो आने वाला है, तो ऐसे में यहाँ की बरसात का कोई पता नहीं कब दस्तक दे दे। हल्की फुल्की बारिश तो आप लोग आजकल भी देख ही रहे हैं, एक दो दिन बाद कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बरसात का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इन पहाड़ों पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, जाने वाले तो जाते ही हैं, अगर बाहर से कोई आया है वो भी जाएगा घूमने फिरने, लेकिन हम आपको ये बता दें कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में पानी में उतरने का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। और रही बात पहाड़ों पर जाने की, जहाँ तो आपकी गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हाँ, बरसात में लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है, तो जहाँ पर भी कोई भी ऐसी संभावना हो या आपको कोई ऐसे निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं कि यहाँ जाना मना है तो वहाँ ना जाएं, कोशिश भी ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन हाँ, गर्मियों में आप ज़रूर इन जगहों का आनंद ले सकते हैं। तो श्रोताओं, अपने आप को भी संभालिए, ख्याल रखिए अपना, और साथ ही पर्यावरण को भी उतना ही संभालिए जितना कि हम अपने घर को संभालते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। तो इस बात के बाद अब कार्यक्रम में हम यहीं पर अपनी बातों को रोकेंगे और चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हम लेकर आए हैं साजन फिल्म से। अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी के अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सामाजिक कार्य को लेकर। सामाजिक कार्य हमारे जीवन और समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक कार्य का अर्थ है समाज के लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना। ये श्रोताओं केवल दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना और समाज में जागरूकता फैलाना भी सामाजिक कार्य का हिस्सा है। सामाजिक कार्य समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं श्रोताओं, तो न केवल उनका जीवन बेहतर बनता है, बल्कि हमें भी आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव होता है। आज के समय में समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता। इन समस्याओं के समाधान में सामाजिक कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो श्रोताओं, हमें अगर ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की भी मदद कर सकते हैं या कोई ऐसा सामाजिक कार्य कर सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए और करना भी चाहिए। साथ ही श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि सारी उम्र हम लोग कमाने में लगे रहते हैं। हम किस लिए कमाते हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दौलत अगर हम कहें कि हमारी क्या है, तो एक तो वो हमारा स्वास्थ्य है और दूसरा हमारे बच्चे। हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत संगति में ना पड़ें, उसके लिए हमें अपना समय उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्रोताओं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, हम दोनों को बच्चों का साथ देना चाहिए। कुछ समय अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं और उनसे बातचीत करें। बच्चों की रूटीन पर अपनी नज़र ज़रूर रखें। बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए और बातों बातों में आप उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश कीजिए। श्रोताओं, बच्चे तभी आपके साथ पूरी बात करेंगे जब आप उनके साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। जब हम पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं ना श्रोताओं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हमारी आंखों के सामने से हटा ली जाती हैं। लेकिन जब हम एक दोस्त बनकर अपने बच्चे से बात करते हैं, तो वो अपने दिल की हर बात, हर राज हमारे सामने ज़रूर खोलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, उनके साथ एज अ फ्रेंड रहें और उनकी हर छोटी से बड़ी बात के बीच में ज़रूर उनका साथ दें। अच्छा बुरा उनके साथ बैठकर डिस्कस ज़रूर करें। लेकिन बात वही है ना कि आजकल जो ये मोबाइल है, ये हमें एक दूसरे से बात करने ही नहीं देता। जब भी हल्का सा समय मिलता है, हमें ये मोबाइल फ़ोन अपने साथ चिपका लेता है, या यूँ कह लीजिए कि हम उसके साथ चिपक जाते हैं। तो श्रोताओं, ये जो चिपकना है, ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और कुछ समय हमें अपनी फैमिली को देना पड़ेगा और मोबाइल फ़ोन को टाटा बाय कहकर कहीं एक कोने में रख देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं श्रोताओं, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, हमारे बच्चों की, हमारे घर की। और हमारे बच्चों को भी हमें यही कहना चाहिए कि मोबाइल टाइम जो है वो हमारा कम होना चाहिए। कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिए, अपनों के लिए ज़रूर निकालिए। ये जो समय है श्रोताओं, बहुत ही मुश्किल समय कह सकते हैं और अपने बच्चों के लिए हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। समय की ये मांग भी है, तो इन बातों पर ज़रूर हमें अमल करना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें हो रही हैं और साथ में आपका मनोरंजन भी हम करवा रहे हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं और सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत। हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं जिसका समय रहता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो श्रोताओं, अब समय हमारे पास कम है, लेकिन हाँ, हम ज़रूर आपको गीत संगीत के साथ जोड़े रखेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं, सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में वीर ज़ारा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय अब श्रोताओं समाप्ति की ओर है। जाते जाते आपको सुनवा कर जाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, आन मिलो सजना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब आपसे लेनी होगी इजाज़त। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी कि आपकी अपनी रेडियो दोस्त को इजाज़त। जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते, और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।

0: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
1: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
0: वही तो।
1: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

0: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम फिर से एक बार हाजिर हो गए हैं आप सभी के साथ 291.2 MHz से। ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, और मेरे साथ है मैम रूमा जी। तो हम पहले कार्यक्रम में आप सभी के साथ हमने अपनी जो विचार है वो साझा किए थे, और आज हम उसी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम का नाम आप सभी को बता देते हैं शुरुआत करने से पहले। तो ये कार्यक्रम है
1: मेरे हौसलों की उड़ान।
0: जी दोस्तों, तो हमारे हौसले जो कि हमें बुलंदियों तक लेकर जाते हैं, तो उन्हीं की उड़ान जो हमें भरनी है वो हम किस तरह से भरेंगे, कौन कौन से अधिकार हमारे लिए हैं जिनके सहारे से हम उस उड़ान को भरेंगे, तो वो सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है दोस्तों हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान में।
1: और दोस्तों, मेरे हौसलों की इस उड़ान का मकसद है समस्त महिलाओं को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, समस्त नागरिकों को जागरूक करना अपने अधिकारों के लिए, जिन अधिकारों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
0: जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने बात की कि हम पहले भी आपके समक्ष अपने विचार साझा कर चुके हैं पहले कार्यक्रम में, अब ये दूसरा एपिसोड है, तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या खास रहने वाला है, तो ये जानने के लिए क्या करना होगा, आप सभी को जुड़े रहना है हमारे साथ। तो क्यों ना मैम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अपने श्रोताओं को एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया जाए, क्योंकि शुरुआत जब प्यारे से गीत और मीठे सी आवाज के साथ होगी तो कार्यक्रम की थोड़ी और रौनक बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने
0: जी। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और फिर से वापस आएंगे इस गीत के बाद, और आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है वो आप सभी के साथ साझा करेंगे।

0: बहुत ही प्यारा गीत सुनाया रुचिका जी आपने हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैम, तो अब इस गीत के साथ ही बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो आज के कार्यक्रम में हम क्या खास बातचीत करने वाले हैं, क्या जो जानकारी है हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं, तो वो आप जरूर बताएं।
0: रुचिका जी, आज इस कार्यक्रम में हम विस्तृत बात करेंगे FIR के बारे में। आप जानती हैं, रोजमर्रा की जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है और अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी शिकायत पुलिस में करवाएं, तो वो कैसे करें? बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस पता नहीं है, तो आज इसी मुद्दे पे हम क्यों ना इस कार्यक्रम के तहत चर्चा करें।
1: जी जरूर मैम, तो सबसे पहले तो हमें ये ही बता दीजिए कि FIR है क्या।
0: FIR एक तरह का एक कानूनी दस्तावेज है जिसके बिना पुलिस किसी भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दे पाती है। माना कहीं पे कोई अपराध हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो उसमें जब तक पुलिस के पास हम रपट दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक पुलिस उस शिकायत का कोई निवारण करने के लिए प्रॉपर कदम नहीं उठा पाएगी। FIR को हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए, किसी भी क्रिमिनल जैसे आपराधिक मामले में हमारे पास एक पहला टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो है FIR। के अभाव में हम किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं और अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमें FIR कराना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: और इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। कहीं पे कोई अपराध हो रहा है किसी भी प्रकार का, छोटा है बड़ा है, गंभीर अपराध है, तो हम प्रथम सूचना पुलिस को देते हैं। ये सूचना किसी भी माध्यम से हो सकती है, फोन के माध्यम से हो सकती है, लिखित माध्यम से हो सकती है। तो ये जो सूचना हम पुलिस को देते हैं, जिसको पुलिस पहले DDR के रूप में या जनरल डायरी में करती है, जनरल डायरी दर्ज करेगी, उसके बाद पुलिस उसमें संज्ञान लेती है और FIR दर्ज होती है।
1: जी मैम, तो अब आपने जिक्र किया है DDR का, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि DDR का क्या मतलब है या इसे हम क्या समझ सकते हैं।
0: DDR एक तरह की, जिसको हम डेली डायरी रिपोर्ट बोल सकते हैं, पुलिस के पास दिन में जो भी शिकायत आती है, जो भी उनके कार्य हैं, एक जनरल डायरी में जिसको GD भी बोल सकते हैं उसमें ये दर्ज करते हैं। उसके बाद पुलिस उस अपराध की प्रवृत्ति को देख के, उस जो भी उनके पास शिकायत आई है मौखिक, लिखित या फिर ऑनलाइन आई है, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस आगे देखती है कि इसको आगे किस तरह से इसमें कार्यवाही करनी है। अगर उनको लगता है कि ये वाकई ही मुद्दा गंभीर है तो उसमें वो पुलिस उसको FIR दर्ज करती है, नहीं तो जो हमारी जनरल जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पुलिस की डायरी में दर्ज रहती हैं, क्योंकि एक तरह से एक रिकॉर्ड होता है DDR पुलिस का जिसको वो मेंटेन रखती है, और ये उनके लिए इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया कि DDR में क्या रहता है कि DDR में जो हम डेली की रिपोर्ट, जो भी सूचनाएं या फिर जो भी हम छोटी छोटी चीजें जो नोटिस करते हैं, तो वो हम डेली डायरी में
0: जो भी जनरल सूचना, जैसे माना कहीं पे पुलिस को कंप्लेंट आती है, इसमें ऐसे भी हो सकता है मैं कहीं जा रही हूँ रास्ते में, मेरा पर्स गुम हो गया है, खो गया है कहीं पे, तो उसको मैं पुलिस के पास भेज दूंगी कि मेरा रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, ये DDR पे मेरे से खो गया है वो, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरे से मेरा पर्स छीन लिया, छीन के भाग जाता है वो, तो उसको पुलिस, वो चोरी का मामला हो गया, तो उसमें पुलिस FIR दर्ज करेगी।
1: जी, तो मतलब हर एक बोलते हैं वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है और अपनी जगह पे उनका एक गहराई से अगर देखा जाए तो बहुत महत्व रहता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए साधारण भाषा में बोलूं तो DDR जो है एक जनरल एक एंट्री है पुलिस की अपने रिकॉर्ड के लिए, और FIR वो है जिसमें वो एक उनको एक कार्यवाही उसमें करनी पड़ती है, उसमें पूरी डिटेल पुलिस को, उसमें जो भी शिकायत करता है या उससे वो उनको उसमें FIR में पूरी रिकॉर्ड करनी पड़ती है।
1: जी मैम, तो अब इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक लेते हैं प्यारा सा म्यूजिक।
0: बिल्कुल, मैं भी आपसे ये कहना चाह रही थी क्योंकि जब हम गंभीर मुद्दों की बात करते हैं तो श्रोता भी हमारे थोड़ा बहुत गंभीर हो जाते हैं और कई बार कई चीजों से वो परे भी हटने की कोशिश करते हैं, तो अपने श्रोताओं को बांध के रखने के लिए एक प्यारा सा मीठा सा गीत तो बनता है।
1: जी मैम, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। तो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आते हैं वापस आप सभी के साथ इस बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण बातचीत के साथ।

0: क्या होती है और आज का हमारा विषय यही है, किस तरह से FIR आप करवा सकते हैं, क्या क्या आपको उसके लिए फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो यही हम बातचीत करेंगे। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब मैम से जानते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि FIR कौन कौन दर्ज करवा सकते हैं और कब करवा सकते हैं।
1: कोई भी व्यक्ति FIR करवा सकता है जिसको अपराध का नॉलेज है, हमारे आसपास में कहीं कोई अपराध हो रहा है उसके बारे में आपको पता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे इस बारे में आवाज उठानी चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के खिलाफ जो वहाँ पे अपराध कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो वो FIR करवा सकता है। वो व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, वो भी FIR करवा सकता है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो हमारे देश का, वो FIR करवा सकता है।
0: जी, मतलब कि ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, जब भी उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है या उनके साथ कुछ गलत हो जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पर ऐसा भी होता है कई बार कि कई छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी सोचते हैं कि हम FIR दर्ज करवाएं, तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि कई बार छोटी छोटी मुद्दों को लेकर हम कोर्ट कचहरी में या थाने में पहुंच जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, जो मुद्दे घर में बैठ के सॉल्व हो जाते हैं, तो पुलिस उनको DDR या जनरल डायरी करती है। और अगर उनको लगेगा कि इसमें हाँ बाकी कुछ गंभीर हो रहा है और इस मैटर में कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस FIR दर्ज करती है।
0: बिल्कुल, तो हम इस मतलब यही समझ सकते हैं कि हाँ, समय की बर्बादी कह सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय जो की बात,
1: बिल्कुल,
0: बातचीत से अगर सॉल्व हो सकती है तो क्यों उसे इतना बड़ा।
1: बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिनकी वजह से ऐसे ही थानों में बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, जो जनरली सिंपल गाली गलौज है, घर के छोटे छोटे मुद्दे हैं, जिनको कई बार आपने देखा होगा कि हम दूसरों को परेशान करने के लिए भी इस तरह के एक्शन ले लेते हैं और थाने में चले जाते हैं और बाद में हम बोलते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उसका एक रीजन रहता है कि छोटे छोटे मुद्दे जिनका कोई औचित्य नहीं होता है उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करने में मुश्किल फेस करती है, तो ऐसे में वहाँ पे काउंसलिंग होती है दोनों पार्टीज को जिनके बीच वो मुद्दा है, छोटा मोटा घरेलू है या जो भी है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस में जाने की जरूरत है। तो ऐसे मामलों में पुलिस काउंसलिंग वगैरह करवा के उन मुद्दों को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करती है।
0: जी मैम, तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई जो है कोई भी व्यक्ति पुलिस में अपनी FIR दर्ज करवाना चाहता है या करवाना चाहे लेकिन पुलिस उसकी FIR दर्ज करने से मना कर देती है, तो ऐसे केस में फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है या उसे किसकी सहायता लेनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है?
1: ज्यादातर मामलों में जब भी हम थाने में जाते हैं तो पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद उसमें अगर संज्ञान, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें FIR दर्ज हो जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस को मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो FIR दर्ज कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके या किसी स्पेशल व्यक्ति को बचाने के लिए या किसी बात को छुपाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादातर होता नहीं है, हमारी पुलिस बहुत ईमानदार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आगे कई बार पुलिस
0: सिचुएशन ही वैसी
1: सिचुएशन आती है तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, या कई बार किसी अपराध को वैसे ही छुपाने की कोशिश में कई लोग, कई तरह के आपको पता है अनैतिक कार्य भी हमारे यहाँ होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी अपने श्रोताओं से, मैं इस तरह की बात कर रही हूँ लेकिन होता है, हमारे कई बार होता है। एज ए एडवोकेट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि वो पुलिस में जाते हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं हो पाती है उनकी, तो ऐसे में फिर उनको प्राइवेट कंप्लेंट देनी पड़ती है कोर्ट में, फिर कोर्ट के थ्रू इंक्वायरी होती है तो कोर्ट के ऑर्डर से वो FIR होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी आपकी किसी भी वजह से आप FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो आप पुलिस अधीक्षक को या DIG पुलिस को लेटर दे सकते हैं और इसमें उस व्यक्ति के खिलाफ या पुलिस अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश जो उच्च अधिकारी हैं वो पास कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं।
0: जी मैम, तो अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए सुनाते हैं श्रोताओं को एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में।

0: तो श्रोताओ, एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में आप सभी के साथ बातचीत करने। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब फिर से अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। तो रूमा मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं FIR की
1: जी,
0: तो अब मैं एक बेसिक सा सवाल है कि अगर FIR जैसे मुझे ही करनी है, मुझे कोई मेरे साथ कोई घटना हो गई है या कोई मेरे चाहने वाले या मेरे कोई मतलब खास रिश्तेदार है ना, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैंने FIR करवानी, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से हम FIR करवा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो FIR करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए?
1: जी रुचिका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति, पहले तो मैंने आपको बताया कि FIR करवा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या उसका जानने वाला हो। उसके बाद FIR दर्ज करवाने के लिए हम लिखित में पुलिस को शिकायत दे सकते हैं, पुलिस थाने में जाके हम मौखिक तौर पे भी पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे पास पुलिस में एक हिमाचल सिटीजन नाम से एक वेबसाइट है, उसमें जाके हम पुलिस में ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और इस FIR को दर्ज करवाते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पहले शिकायतकर्ता का नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो वो भी, उसके साथ साथ जहाँ पे घटना हुई है उस जगह का ब्यौरा पुलिस को देना पड़ता है, क्या वहाँ पे अपराध हुआ है, किस तरह का अपराध हुआ है, किसके साथ अपराध हुआ है, उस अपराध की प्रवृत्ति कितनी गंभीर है या सामान्य अपराध है, वो सब हमें उस FIR में दर्ज करवाना पड़ता है। और उसके अलावा फिर हमें आरोपी व्यक्ति के बारे में भी सारी डिटेल हमें पुलिस को देनी पड़ती है ताकि पुलिस उस तक आराम से आसानी से पहुँच पाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अगर मान लो कोई चीज हमसे छूट जाती है तो बाद में फिर हमें पुलिस को भी दिक्कतें आती हैं और कोर्ट में जब उस चलान को पेश किया जाता है, कोर्ट के समक्ष जब वो न्याय के लिए उस केस को लाया जाता है, तो वहाँ पे हमने कई बार देखा है कि अपराधी जो है गंभीर अपराधों में भी छूट जाते हैं, तो उसमें वो हमारी ही कुछ न कुछ कमी रह जाती है कि जब हम FIR दर्ज करवाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान होता है कि ध्यान रखना होगा FIR करते समय, लिखवाते समय, कि जहाँ पे अपराध हुआ है वहाँ पे मौके पे कौन कौन था, किस किसने उस अपराध को देखा है, उस केस में गवाह कौन कौन है, उनकी भी डिटेल हमें पुलिस को देनी पड़ती है।
0: जी मैम, क्योंकि जब हमें ये सारी बातें पता होंगी, हम जानते होंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा
1: जी।
0: क्योंकि ऐसे हम ब्लैंक होके, जैसे हमें पता, कई बार होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है और उनके साथ गलत हुआ होता है, जब वो FIR करवाने जाते हैं तो फिर उन्हें सामने से जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर सही से जवाब भी नहीं दे पाते।
1: इसलिए हम जो भी हमारे पास जानकारी है उस अपराध से संबंधित, वो हमें पुलिस को डिटेल में बतानी चाहिए, अब तभी पुलिस जो है हमारी अच्छे से मदद कर पाएगी।
0: जी मैम, और अब हम बात करें कि जैसे FIR आपने बता दिया कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से हम FIR करवा सकते हैं
1: जी।
0: अब जैसे कोई घटना हुई है तो हम FIR उस घटना की कब करवा सकते हैं, कितने समय में करवा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट है या फिर कभी भी करवा सकते हैं?
1: वैसे तो जब भी कोई अपराध कहीं भी होता है तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर FIR दर्ज हो जानी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर FIR दर्ज नहीं हुई है तो व्यक्ति कभी भी वो FIR दर्ज करवा सकता है। ज्यादातर आपने रुचिका जी देखा होगा, महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध हो जाता है, यौन शोषण होता है या कुछ भी, तो वो अपने घर में भी नहीं बता पाती है, लोग लज्जा के डर वो इन चीजों को छुपा जाती हैं। तो ऐसे में बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, अगर किसी व्यक्ति, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई गंभीर अपराध हुआ है और उसको लगता है कि अपराध मेरे साथ बार बार हो सकता है, बहुत पहले भी हुआ हो, वो ऐसे मामलों में वो कभी भी FIR दर्ज करवा सकते हैं।
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी बात की है आपने महिलाओं और बच्चों की, तो हमारा कार्यक्रम जो है खास है भी महिलाओं और बच्चों पर आधारित, तो उनकी बात ना हो तो कार्यक्रम तो फिर हमारा बिल्कुल अधूरा सा रह जाएगा, तो उनके पर भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम,
1: मैं रोकना चाह रही हूँ आपको यहीं पे, बहुत देर हो गई, हमारे श्रोताओं ने एक प्यारा सा गीत नहीं सुना है।
0: जी जरूर, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से वापस आएंगे और जानेंगे महिलाओं और बच्चों के बारे में।
1: जी

0: तो दोस्तों एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में आप सभी के साथ बातचीत करने। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे महिलाओं और बच्चों की। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई जैसे FIR दर्ज करवाई है किसी ने और उसमें महिला या फिर कोई बच्चा जो है मुस्लिम है, तो उनके लिए कोई खास प्रावधान या किस तरह से उनके लिए कोई प्रावधान रहते हैं?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने रुचिका जी पूछा है मुझे। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है हमारे कानून में। अगर किसी महिला अपराधी या किसी बच्चे के खिलाफ कोई अपराध दर्ज किया जाता है तो उसमें विशेष प्रावधान है। पहले तो मैं बच्चों की बात करूंगी, तो बच्चों के लिए तो अगर किसी बच्चे को अपराधी है किसी केस में, चाहे कोई गंभीर मुद्दा है, तो पुलिस जो है वो एक तो उस बच्चे से जब बात करेगी या उस बच्चे के केस में मौके पे जाएगी तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ये मान सकते हैं कि बच्चे डर जाते हैं पुलिस को देख के, किसी भी यूनिफॉर्म को, पुलिस हो वकील हो, उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तो ये विशेष प्रावधान है कि पुलिस किसी भी बच्चों के केस के मामले में संज्ञान लेती है तो उस बच्चा, जिसको वैसे तो हम बच्चों को अपराधी नहीं अपचारी बोलते हैं, तो ऐसे किसी बाल अपचारी के पास जब पुलिस जाती है तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, उससे एक दोस्त की तरह बात करेंगे, उसको फैमिलियर माहौल देंगे वो। और जब पुलिस बच्चे को किसी भी केस में अप्रिहेंड करती है, उसको उस केस में पकड़ती है, तो बच्चे को पुलिस थाने में डायरेक्ट नहीं ले जाया जाएगा, उसके लिए विशेष हमारे जो पुलिस बाल पुलिस इकाई है, इसकी चर्चा हम फिर किसी अगले कार्यक्रम में करेंगे
0: जी।
1: तो वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है, फिर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, उसको सामान्य कोर्ट में पेश ना करके बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट और दो सोशल वर्कर, एक महिला और एक पुरुष होते हैं, उनके समक्ष उनको पेश किया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी उस बच्चे को यूनिफॉर्म में अरेस्ट कर लेते हैं या फिर बच्चे को सामान्य कोर्ट में, मतलब जो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसका भी हम चर्चा बाद में करेंगे अपने किसी कार्यक्रम में, तो उनकी फॉर्मेलिटीज को अगर पूरा नहीं करते हैं तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ या उस कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के मुद्दे में ये है कि कोई भी महिला अपराधी अगर उसके खिलाफ FIR हुई है तो पुलिस उसको शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर उस महिला का भी बयान रिकॉर्ड करना है तो महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी, या महिला पुलिस अधिकारी नहीं है थाने में तो वहाँ पे उस महिला के परिवार की कोई महिला सदस्य या परिवार के सदस्य वहाँ पे होने जरूरी हैं। महिला को बार बार थाने में आने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अपराधी है, अगर वो बोल देता है कि मुझे मेडिकल नहीं करवाना है, तो पुलिस उस बच्चे का जबरदस्ती मेडिकल नहीं करवा सकती है। दूसरा, महिला का अगर मेडिकल करवाना है FIR होने के बाद, की ये भी एक प्रोसेस है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करती है तो उनका मेडिकल भी करवाया जाता है। तो मेडिकल के लिए पुलिस जो है वो उस महिला के किसी रिश्तेदार को, परिवार के सदस्य को साथ में रखेगी। मेडिकल जो है वो हमारे महिला चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। महिला चिकित्सक नहीं है तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी महिला होनी चाहिए, साथ में उसका परिवार का कोई सदस्य होना जरूरी है।
0: जी मैम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दोस्तों तक पहुँचाई है कि महिला, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं होता है तो हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले से तो फिर वैसे ही बोला जाता है कि लड़कियों को तो वैसे ही बोला जाता है कि आप दूर ही रहिए, या महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें तो फिर वो को जान नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका जी, और आजकल के समय में जिस तरह के अपराध हम महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो कई बार तो हम परिवार में ही ऐसे गंभीर अपराधों को भी छुपा जाते हैं। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यौन अपराध हो रहे हैं, लेकिन एक अपनी इज्जत की खातिर या तो हमारे परिवार के सदस्य ही बोल देते हैं कि नहीं, हमें थाने में नहीं जाना है, और वो महिला चुपचाप से उन अपराधों को उनको सहे जा रही है। और इस तरह से सहने से क्या हो रहा है, एक तो हम अपराधियों को और ज्यादा शायद दे रहे हैं, वो उनको बढ़ावा मिल रहा है। वो एक महिला के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ अगर कोई कार्रवाई टाइम पर नहीं होगी तो फिर वो इसी जद में कोई और महिला आएगी, और इस तरह से, और वो देखते हैं अपराधी जो इस तरह का होगा वो यही देखेगा कि मैं कहाँ पे किसको हरास करूंगा तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है, वो ऐसे कमजोर पक्ष को ढूंढते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। और महिलाएं और बच्चे तो पहले ही हम मान के चले हैं कि ये वो तबका है हमारी सोसाइटी का जो अपने हक के लिए ही आवाज नहीं
0: उठा पाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
1: ऐसे में महिलाओं को आगे आना चाहिए, अगर उनके साथ कोई गलत
0: कोई घटना
1: घटना हो रही है तो ऐसे में उनको आगे आना चाहिए ताकि इन अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो और ये अपराध जो हमारे खिलाफ हो रहे हैं वो कम से कम हो।
0: जी बिल्कुल मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कोई भी गलती अगर हो रही है तो उसके पीछे हम ही कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे उन्हें बढ़ावा मिल जाता है और वो जो दोषी है वो और गलत करने का सोचते हैं।
1: और अपराध की जो दर है वो दिन प्रतिदिन
0: बढ़ती जा रही है।
1: हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो हमें डर लगता है। तो ये सब चीजें जो है, इन चीजों से बचने के लिए हमें, मेरा तो सभी बहनों से बच्चों से अनुरोध है कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। जहां उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है उस गलत को रोकने के लिए वो प्रयास करें। जब तक हम खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपना सहारा खुद नहीं बनेंगे, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। और हमारे ये जो कानून है वो इतने बढ़िया है, इतनी अच्छी सुविधाएं हमें दी हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि महिला को थाने में नहीं बुला सकते, महिला को पुलिस थाने में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है कि आप आइए और यहाँ पे दर्ज, हमारे पास FIR दर्ज करवाइए या फिर बयान दर्ज कीजिए। पुलिस खुद उस महिला के घर में जाके या उस बच्चे के पास जाके FIR दर्ज कर सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है, उनके जो भी उनकी इस केस में उनको जरूरतें हैं पुलिस उनको खुद असिस्ट करती है। तो इस तरह से अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे छुपाइए मत, क्योंकि छुपाने से क्या है, चीजें बढ़ जाती हैं। हमारे साथ अपराधों की जो प्रवृत्ति है वो और ज्यादा इंटेंस होके हमारे सामने आते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमें खुद ही सबल होना पड़ेगा, खुद के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम कहाँ जाएं, कहाँ FIR करवाएं। हाँ, ये मुद्दा भी बताऊंगी, FIR करवाने के लिए अपने आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बड़े कहीं जगह जाना है, आपके घर के आसपास कोई चौकी है तो आप वहाँ पे भी दर्ज करवा सकती हैं। और अगर आपके साथ कोई थाने में जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए। 100 नंबर पे पुलिस की सहायता हमें हमेशा मिलती है, तो आप उस पे जाइए। और अभी हमारे राज्य सरकार ने एक और महिलाओं के, पीड़ित महिलाओं के लिए स्कीम शुरू करी थी, वन स्टॉप सेंटर करके, सखी नाम से हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी महिलाएं जो हैं वो अपनी बात रख सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर में जाके अगर उनको FIR करवानी है तो वहाँ पे भी हमारे लीगल

0: एडवाइजर्स रहते हैं, उनके माध्यम से वो FIR दर्ज करवा सकती हैं।
1: जी मैम, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बोलते हैं ना कि एक गहराई में जाकर आपने ये जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई है, और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं, क्योंकि खासकर ये केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक बोलते हैं ना कि वही बात आ गई कि हमारी सोच हमें
0: जहाँ कमी है लेके चली जाती है, जहाँ जागरूकता की कमी है और जहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस बात में बंधे रहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे परिवार का क्या होगा,
1: परिवार वालों को लोग क्या बोलेंगे।
0: बिल्कुल। दूसरा, एजुकेशन की कमी महिलाओं के साथ ये भी रहता है, परिवार की इज्जत के साथ साथ अगर कोई अपने हक में आवाज उठाना चाहती है तो उनका नॉलेज नहीं है। और हमारे इस मकसद, मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम आप तक जानकारी पहुंचाएं, आप इस कार्यक्रम को सुनिए, हमारे साथ जुड़िए, और किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी भी अगर चाहते हैं तो उसके संदर्भ में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए हम आपका तहे दिल से आपकी मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है या आप किसी गलत घटना के शिकार हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाए हैं, तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रुचिका जी, बहुत देर से हमारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोता कहीं बोर ना हो जाएं।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम वन बाय वन एक से दूसरी बात हम जोड़ दे रहे हैं, और थोड़ा सा अपने दोस्तों की, अपने श्रोताओं की एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, तो एक प्यारा सा गीत फिर से सुन लेते।
1: जी चलिए, तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और आते हैं फिर इस गीत के बाद वापस अपने कार्यक्रम में।

0: तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मैम से कि हम ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें की पुलिस डायरेक्ट जो है FIR दर्ज कर सकती है। तो मैम प्लीज आप मुझे भी बताइए और हमारे दोस्तों को भी बताइए कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें की डायरेक्ट जो है FIR दर्ज करवाई जा सकती है।
1: बहुत सारे ऐसे गंभीर मामले हैं रुचिका जी, जिनमें पुलिस जो है वो डायरेक्ट FIR दर्ज कर लेती है। इनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या FIR दर्ज करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा, हत्या के मामले हैं, रेप के मामले हैं, ड्रग्स के से रिलेटेड जो मामले हैं, जो भी बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध, उनमें पुलिस बिना किसी वारंट के या बिना किसी DDR के डायरेक्ट फोन पे या किसी उसमें सूचना के आधार पर FIR दर्ज कर सकती
0: है। जी, बहुत अच्छे से बताया मैम आपने कि किस तरह से या कौन कौन से ऐसे मामले रहते हैं जिसमें कि डायरेक्ट जो है हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब ये जानना चाहूंगी कि FIR दर्ज करवाने के बाद जो है क्या प्रोसेस रहता है या क्या उसके बाद किया जाता है।
1: FIR दर्ज हो जाने के बाद पहला जो कार्यवाही पुलिस की रहती है वो यह कि वो दोनों पार्टीज के साथ जिसके अपराधी को संपर्क करती है, वह मौके पे जाती है जहाँ पे अपराध हुआ है, मौके वारदात पे जाके इंक्वायरी करती है। उसके बाद जो भी FIR से रिलेटेड जो भी घटना है, घटना का ब्यौरा नोट करेगी, गवाहों के बयान दर्ज करेगी पुलिस, उसके बाद जो शिकायत करता है उसके बयान दर्ज करेगी, उसके बाद सारी कार्रवाई एक चालान चार्ज शीट इसको बोलते हैं वो तैयार होती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस के पास इंक्वायरी के लिए 90 दिन का समय होता है और अगर किसी विशेष परिस्थिति में 90 दिन के अंदर वो कार्रवाई नहीं पूरी हो पाती है तो इसमें पुलिस 90 दिन का और समय एक बार ले सकती है। और जब ये सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है तो इस चार्ज शीट को पुलिस कोर्ट में दर्ज करती है, कोर्ट में दाखिल करती है, और कोर्ट में दाखिल होने के क्या समय जो है वो चार्जशीट को पुलिस कोर्ट में दाखिल करती है और इस चार्जशीट को पूरी इंक्वायरी पूरी होने के बाद कोर्ट में दाखिल करने का समय 60 दिन का होता है। 60 दिन के भीतर पुलिस को ये जो भी कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है।
0: जी मैम, तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत जो है अपने दोस्तों के साथ की है और उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त महिलाएं और बच्चे जो हैं इस अधिकार के बारे में जान ही चुके होंगे और अपने अधिकारों का जो है फायदा जो है हमें लेना चाहिए, पर एक ध्यान जरूर रखना है हमेशा कि उसका गलत फायदा हम कभी भी ना उठाएं।
1: बिल्कुल नहीं, और मैं यहाँ एक बार और जोड़ना चाहूंगी, अगर हम बिना किसी को परेशान करने के लिए गलत FIR दर्ज करवाते हैं तो गलत FIR करवाने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और उसपे भी सजा के प्रावधान है।
0: जी, क्योंकि हम अनजाने में ही सही, पर हम कई बार शैतानियों के चलते ही ऐसी हरकतें कर देते हैं कि मजे लेने के लिए ही कई बार होते हैं ऐसे।
1: कई बार हम किसी को बिना मतलब के हरास करने के लिए इस तरह की गलत FIR करवा देते हैं तो ये भी एक अपराध है।
0: जी,
1: तो गलत इंफॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को देना या किसी थाने में देना भी अपराध है। तो इस तरह की कोई भी जो गलत जानकारी पुलिस तक ना दें, उनके कार्य को ना बढ़ाएं। वैसे ही आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें समय पर न्याय नहीं मिल पाता है तो उसका कारण कई बार ये भी होता है कि हम पर्सनल रंजिश के चलते किसी को झूठे मामलों में भी हम फंसा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, अपने हमें जो अधिकार मिले हैं उनका एक पॉजिटिव वे में यूज करना है और उन अधिकारों के लिए अपनी जो आवाज है वो बहुत जरूरी है उठाना, जो कि कई केसेस ऐसे होते हैं हम बहुत सारी बातें सोचते हैं और अपने ही लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो ये कार्यक्रम हम इसीलिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हम सभी का ध्यान रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को नहीं भूलना है और अपने आप के लिए आवाज उठाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम औरों के लिए खड़े हो सकते हैं तो अपने लिए भी खड़ा होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि जो भी अगर आपकी कानून से संबंधित कोई भी अगर आपकी परेशानी है या कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आपको समाधान चाहिए तो आप डायरेक्ट रूमा मैम के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान जो है वो आप पा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैम प्लीज आप हमारे दोस्तों को बताइए कि वो किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं और कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका जी, जब तक हम इनको अपना संपर्क नंबर नहीं बताएंगे तो ये हमसे कैसे जुड़ेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो आप सभी नोट कर लीजिए, हमारा संपर्क नंबर है 9418433। 31223। आप इस नंबर के माध्यम से किसी भी तरह की कानूनी जानकारी FIR के संदर्भ में अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
0: जी दोस्तों, तो मैम ने आपको अपना नंबर बता दिया है, तो जैसे भी अगर, पर ये नहीं है कि फिर वही बात आ गई कि गलत है, उसके लिए कोई भी काम नहीं करना। आपने मैम से कोई भी अगर समस्या का समाधान चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों आपको, 9418431223। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और मैम से आप जुड़ सकते हैं। तो मैम अब लेते हैं अपने दोस्तों से अलविदा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमने बहुत बातें की हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है उन तक पहुंची है। और अब इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में,
1: इसी कार्यक्रम में
0: एक नए विषय के साथ, है ना, नई जानकारी के साथ।
1: जी हाँ रुचिका, दोस्तों को अलविदा तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यक्रम में हम उनसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं उनसे जुड़ी रहूं और श्रोता भी हमारे हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। तो आप प्लीज प्लीज हमसे जुड़े रहिए, अपनी जानकारियां साझा कीजिए, अपनी तकलीफ, अपनी जो भी आपकी समस्या है वो हमसे साझा कीजिए। हम आपकी समस्या के निवारण में जहां तक संभव हो सकेगा आपकी सहायता करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलिएगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जानकारी जो है आप ले सकते हैं। दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। अब तक इंतजार कीजिए और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक

व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the new...

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

92.2 MHz पर सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक श्रोताओ कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया।

तुहां बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कीते आए अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने अशो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और

आहां बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने हैं अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर ए तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। कहा श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहां सारे ने बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते, और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो बी ट्यून कर रहा और आऊं सचिन कपूर हाजिर बचुआ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन हाँ श्रोताओं तुंदा सबीरा आजकना कार्यक्रम खास है और श्रोताओं जहन भी बल्द की आजकना कार्यक्रम खास है तहने तू पता लगन दुना की अज कोई खास शख्सियत के आसुआसुओं की विराजमान है इंदे वेडी गुंजन रे रिकॉर्डिंग रूम जी बिल्कुल इस शख्सियत किसी भी परिचय भी मोहताज नहीं है श्रोताओं और हर बार परिचय और मुझे मना कर दिन की परिचय न देना मेरा कजो की पिछले 6 साल था कि आसो रेडी गुंजन धर्मशाला सो के जुड़ रहे हैं और खासकर इंदी अपनी गप्पा सो के जुड़ रहे हैं कजो के कार्यक्रम इंदा गद्याली कार्यक्रम है और यह कम्युनिटी जो बहुत प्यार कर दिन कजो की यह कम्युनिटी होगी जुड़ रहे हैं आसु होगी जुड़ रहे हैं और रूट्स सो के जुड़ रहे हैं श्रोताओ चंद्र भारद्वाज जी यारा ना है जो की किसी भी परिचय रे मोहताज नहीं ये आवाज चाहे तो है दुबई में होने लिया ये आवाज चाहे तो है ऑल ओवर वर्ल्ड लिया वेड़ी गुंजन रे माध्यम थो हमेशा ये आवाज किया सो हर जगह हर घर हर डिस्ट्रिक्ट हर शहर हर नुक्कड़ में किया सब पूछ दिया जी बिल्कुल चंद्र भारद्वाज जी विशेष विशेष टॉपिक पर किया सो असुओं की चर्चा करना है जो टॉपिक आजकल बड़ा गंभीर है और सरकार भी इस पर किया सो बड़ा जोर दे चुका कर दिया ता अक कम्युनिटी वे जिम्मेदार नागरिक भूने रे खातिर के ने स्पेशल आज तुसुओं की रूबरू भूना है ना चंद्र भारद्वाज जी तुंदा वेड़ी गुंजन मा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन
1: नमस्कार धन्यवाद सचिन कपूर जी एंड धन्यवाद के अंदर पूरा रेडियो गुंजन स्टाफ डायरेक्टर साहब के समय समय पर महत्वपूर्ण विषय जो लेकर तो आवाज चुके रहते हैं आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है जितना असि टॉक करने वास्ते जितना गल करने वास्ते महत्वपूर्ण उतना ही सो भयंकर नशा आज के यूथ में जो कि यूथ री नस नस में कई बार सो गिजी पुजरा और बड़ा चिंता रहा विषय है जी हाँ असें गल करवा दे अजय चिट्टा जोड़ा सुक्का नशा जो महंगा नशा तेसरे बारे में चिट्टा एक ऐसा नशा बुझ चुका है अजकल जो कि ग्रां ग्रां तक पुजगे होंदा जो सप्लायर चिट्टे बारह होंगे खासकर यूथ जरा ग्रां रहा सो करके करके ठेच पेट में चली छा इस विषय पर गल करना बहुत जरूरी बुझ हो रही अज की डेट में किस तरह था इस चिट्टा जैसे नशा जो असें खत्म करना अत क्या ठेरी जड़ा जो बिल्कुल खत्म करना यह जो चिंता का विषय है इत पुठे मिल जुली कर सभी काम करना पैना इस पुठे अच्छ पूरी गलबात जो सजन कपूर जी बोले
0: आगाज कर लेन देन गीता होगी और दातों बाद फिर टॉपिक पर इन

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रो और बन रहे ना सुसोगी बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में हाई है जी कार्यक्रम जो हागो बढ़ंदा इन शतो और कार्यक्रम में जब है लेके चलते है तू सु सब भी जो बिल्कुल अचकना जो विषय सो बड़ा गंभीर और प्रवक्ता इंद चंद्र भारद्वाज जी ने आजकल इस कार्यक्रम पर और इस विषय पर किया सो बिल्कुल इंडिया गल करनी है सो तो चिट्टा अकायसा नशा जो वाकई में इंद यूथ जो किया सो खराब करू कर देना और बल देना की हर देश में रीढ़ रिया डेके सो यूथ बंदा युवा बंदा और युवा अगर सुखे नशे में प्यो करता और सुखे नशे में पे करे अपने आप जो बर्बाद करू करता अपने घर जो बर्बाद करू करता वाकई में ये बहुत ही खराब और खतरनाक है। तैया चल देने सीधा तुसु चंद्र भारद्वाज जी ले लेकर
1: हाँ बिल्कुल सचिन कपूर जी बहुत ही महत्वपूर्ण गप तो है बल्ले है कि करके करके इंदा यूथ जी आज की डेट में ग्रस्त हुए छुरे इस नशे थम खास कर इंदा जेड़ा यूथ था पैसे वाला यूथ था जी हर एक घर ठीक ठीक ने चका सा जो दिन दिन अपने बच्चे ऊपर ध्यान ना रखते हैं थोड़ा जिन्हें ये चाहिए कि तो जने भी तुम्हारा बच्चा स्कूल टाइम हों कॉलेज टाइम हों थोड़ा ध्यान रखना कि बच्चा जो पॉकेट मनी दिच होंगे या कुछ होर जरूरत वास्ते पैसा दिच होंगे ठेरा ध्यान रखना कि ठेरा यूज काड़ी बच्चे होंगे एक्चुअली दूसरा ध्यान ये रखना कि तुम्हारे ग्राम कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो संदिग्ध लगता करके इं तना कि इनका बच्चा संजय संजय गच होंगे भी अगर गच्छा कोई कैटेगरी है अच्छी जगह किठे वर्द है अत करके करके इस नशे का जो है सो सेवन करू करते हो है ना जी तो यह थोड़ा जी तुम ध्यान रखना पैना जरूरी ध्यान रखना पैना क्योंकि ऐसा बुच्छ हों बच्चे इन्हें तो खरे होंगे लेकिन जो बार हम कैटेगरी है सो लालच देंगे पैसे लालच है कि इस तरह के पैसा तो लगना है फिर इतने एडिक्टर हो जाते फिर तो कुछ भी कर सकता है पैसा जो बच्चा या स्टूडेंट है जहां तक तीन पैसा मिलोन तद तक ठीक है और इतने एडिक्टर हो जाते जो पैसा खत्म हो जाता तो सो फिर कुछ भी कर सकता जो एडिक्टर चिट्टे सो फिर कस भी हद तक गुजर सकता सो चोरी चकारी करना भी शुरू हो जाता सो कुछ चीजा बेचना भी शुरू हो जाता सो झूठ बोलना भी शुरू हो जाता सर यारी करी ऐसी बुझ गए कि सो सब खराब यारी करी होंगे इं सौगी मिली कर जे सो चिट्टे का सेवन करता तो वास्ते बड़ा चिंतनीय विषय कि ऐसी गतिविधि पर या ऐसे व्यक्ति जो तेरे टच में या बार होने होंगे सो सप्लाई करवाद या संदिग्ध ऐसे व्यक्ति मिली गए तो तीन जरूर तुम जो थोड़ा जहाँ आइडेंटिफाई कर तीन जरूर सारी सूचना जो है ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम होगी या शहरी एरिया में हमारे नगर परिषद नगर निगम के पार्षद के माध्यम होगी जो इन पुलिस विभाग जो दे सकते हैं खजे कि दोस्तों ये जो नशा ता ही खत्म हो सकता जो तुसे भी जागरूक होन असें भी जागरूक होन पूरा समाज जागरूक खास कर शुरुआत अपने घर कर अपने बच्चे पर थोड़ा जहां नजर रखना कि जो खर्चा है दिखो करते किसी भी चीजें वास्ते इस खर्चे पर जो ध्यान रखना संजय जरूर पूछना अकाउंटेबिलिटी सेट करनी दे बच्चे कि अगर तुसे पैसे लैत खाती वास्ते लै तो त्यार ध्यान रखना बड़ा जरूरी है तो सब तो मोटे जी है सचिन कपूर जी जागरूकता सब तो बड़ी चीज है तुसे भी करवाते जागरूक अपने रेडियो गुंजन के माध्यम से होगी विभिन्न संस्था भी जागरूक करो इस टाइम में बट करके ना करके अपने घरों बल देना अपने घरों शुरुआत हुआ ता ही ठेरा बेनीफिट जो मिलता है सचिन कपूर जी
0: जी बिल्कुल सो तो गलबात की है सो कार्यक्रम में ये चलते रहने हैं और फिलहाल तो है तू सब भी लेकर चल दे सो तो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी वापिस मिल दे इस गीता तो बाद

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और सचिन कपूरा मुंजो होगी इंदे प्रवक्ता जी चंद्र भारद्वाज जी जो सो मौजूद हैं रेडी गुंजन धर्मशाला मंजे ता आइए चंद्र जी होगी और गल बात करते चंद्र जी आज ही कितु है रुक करते आजकल मतलब हाले बच्चे जवान मैंने बच्चों करते हैं चाहे सो 14 साल रहे 15 साल रहे 16 साल रहे ये बच्चे क्या ना ये टीन एज किया ये चिट्टा लेना किया सो लगे पे करते हाँ ना तो इन्या जो क्या करे कि यारे पेरेंट किया सो रोकना क्या करे इन्या पर बंदिश लगान का जो कि अगर बंदिश भी लाइन देना तो बच्चे तू वो पता आजकल सुसाइड कर लियो कर देना देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स तो क्या करे हल बुन थोड़ा करे इति पर नजर किया सो दौड़ा तो है जरा
1: बिल्कुल सचिन कपूर जी स्वस्थ है जरा मेरा सजेशन आ

0: रूप करा तो सह पर इतना भी लाड प्यार ना करा, इतना भी खुला खर्चा ना दिया कि ठेरे परिणाम खराब निकल। इस करके जड़े में तुसे पैसे दिंदे में पहले तुसे बोलो तो बच्चे ने जरूर ठेरे लाइबिलिटी सेट करा कि अगर तुसे 100 रुपये दिता तो ठेरे संजय जरूर चेक करा कि 100 रुपये बच्चे समान खरीदो कि ना खरीदो, या ना खरीदो तो 100 रुपये सो करा पवा करके। ऐसा तो ना किसी कैटेगरी है स्कूलों में कॉलेजों में ऐसी कैटेगरी तो ना करके जे तह कैटेगरी उसे खराब उच्च होंगे है ना जी। तो यह चीज़ें थोड़ी जी ना पैनी क्योंकि टीन एज था शुरू था 10वीं 12वीं क्लास था जे सो बच्चे पर नज़र रखना जो है शुरू कर दिया और तैयारी कैटेगरी पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया क्योंकि कैटेगरी हो बच्चा खराब होंगे सोसाइटी हो खराब होंगे। आस पास की सोसाइटी ठीक रखा, अपने बच्चे के जो दोस्त मित्र चारा जितना भी जरूर चेकअप करा ठेरा जरूर ठेरा मोनिटरिंग करा कि करके न करके करके तत्मक व्यक्ति है सतना अख बच्चा है सतना जो खराब है ना जी। अख खराब होला तो सो दूए भी खराब करता। दूआ ऐसा भी सुनिश्चित करा कि तुम्हें बच्चे हो कोई ऐसा व्यक्ति इंटरलिंक तो नहीं जो कि बाहरले व्यक्ति के संपर्क में जाए, अगर हाँ तो ठेर भी जानकारी रखा, अगर लिंक में हा खस की बार थे व्यक्ति ने तो ठेर रीजन पूछा बच्चे कि ये जो बार वाला दोस्त था ये क्या एक्टिविटी से रही क्या संपर्क का से रहा, अगर ठेर भी तो जान पहचान रखा तस ये भी ठेरे बारे में तस बंदरे बारे में पूरे पूरी तरह से जानकारी रखा तुसे किसे जो छुंदा से कई छुंदा या क्या सेरा उद्देश्य से है इन्हें ग्राम या बच्चे बच्चे होगी इन्हें होगी दोस्ती करना क्या उद्देश्य है सारी जानकारी जी असी होनी चाहिए सचिन कपूर जी ता जो समाज थोड़ा जिन्हें चिट्टा मुक्त हो सकता तो ये चीए ना कि चिट्टे ये जो टूटे सकते।
1: बिल्कुल बहुत सारी गल बात कह रहे हैं सो चल रही इन शो तो इस वक्त कार्यक्रम मंच और इस प्रकार होगी तो सो की जानकारी असु बिल्कुल शेयर करनी ही ना और अजिंदे प्रवक्ता के ना सो असु की मौजूद हैं चंद्र भारद्वाज यहाँ रहना बार बार दसना चाहता है आता बिल्कुल चलिए लेकर चलते हैं तू सब भी जो इस प्यारे दे गीता किनारे गीता तो बाद रूबरू करवल है इन प्रवक्ता सो के।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नए सो चल रही हैं श्रोताओं आजकल खनकर का बड़ा ही गंभीर विषय लेकर के ऐसा है उपस्थित भुवन और समय समय पर गए तू पता आरजे सचिन कपूर के ऐसा समय समय पर ऐसे मनु जो जरूर तुसु अगो लेकर इंदा जो चीजा ज्यादा बढ़ दी हिन और जो जिस चीजा पर इंडिया के ऐसा काम करूरब हुआ तो चंद्र भारद्वाज जी इस समय के इनसो आसू सब भी पता के इंदा जो विधायक इन सुधीर शर्मा जी तीन हो गए किया ऑफिस इंचार्ज हिन त्यारा सब काम के ऐसा संभाल दे हिन है ना और इन्हें पूरा पता इन्हें पूरे धर्मशाला कौन सी एजेंसी रहा पता की कड़ी के ऐसो कौन बच्चा के या कितना चिट्टे रहा उपयोग करू करता कड़ी के ऐसो चिट्टा ज्यादा के ऐसो बेकू करता पूरे नजर इन्हें रख रहे बंदे पूरे पार्क ही अपनी नजर किया सो इन पूरी धर्मशाला कौन सी एजेंसी में 17 वार्ड में जितनी भी पंचायत सब भी अंदर आ रही है ऐसो बरीकी होगी तत्पर नजर है। तो चंद्र भारद्वाज जी सीधा सवाल मेरे है कि धर्मशाला में क्या लागू करता तू सो की चिट्टे रहा कितना करीब प्रभाव है इस समय युवा पर।
1: बिल्कुल सचिन कपूर जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जो धर्मशाला पर्टिकुलर गल करूँ तो धर्मशाला में खैर इतना ले खराब स्थिति ने मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस विभाग जो कि काफी अच्छा काम थी करो एक्चुअली पिछले जिन्हें कुछ केसेस पढ़ो कर देती है बट तुरंत ठेरे सूचना पुलिस विभाग जो मिल करती है तीन सो जो सरगना सो भी दबोचे थे जो चिट्टा व्यापारी ने या जो सेवन करते सो भी दबोचे ने या फिर केस भी करे तो इस टाइम मुझे लगता कि धर्मशाला में स्थिति हले इतनी खराब नहीं है जितनी बाहरले क्षेत्र में जो पंजाब सो भी लगता है एरिया में जो हिमाचल के एरिया प्लेन एरिया से खराब बट अगर धर्मशाला की गल करूँ तो इतनी खराब स्थिति नहीं है काफी अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट ने अते लोग भी इन जागरूक ने जो कि बिल्कुल जागरूकता सौगी इस पुठे काम करो करते विभिन्न एनजीओस भी ने अपने मनो भी सौगी सब काम करो करते कने ऐसी अली भयानक स्थिति तो धर्मशाला में खास कर नहीं है बट बोल सकते अगर ज्यादा इंटरेस्ट ना ले लेता बट अगर ये जागरूक रह ले हर कोई जो ऐसो इस बारे में जान ला कोशिश कर ला तो गप कर ला तो ताई जो ऐसो अह बच सकते धर्मशाला की गल करी तो अभी स्थिति जो अंडर कंट्रोल है ऐसे कोई व्यक्ति ने जेड़ा कि मारो मारी प्योरी वो मेरे बोलने का मतलब बाहर उस प्लाइट थी कुछ एक पकड़े भी पुलिस आए कह के पीछे ने तो रोंदी है लगातार 2-3 महीने खबर चली रही कि आज फलानी जगह सप्लायर पकड़ा गया आज यहाँ वो ये हो गया वो हो गया सारा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट सारा मुस्तैद है बट बीइंग ए नागरिक असी अभी थोड़ा मुस्तैद होना चाहिए जो इन ग्रां रे बच्चे तीनों खुद जागरूक होना पैदा हर एक आम ग्रामवासी जागरूक होना पैना हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे अपना एक भारत का नागरिक हिमाचल का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझे कोई ऐसी एक्टिविटी होंगी तत्पर कंट्रोल कर जान पहचान भी कर फिलहाल धर्मशाला बारे में पूछता हाले अंडर कंट्रोल धर्मशाला में इतना बुरा हाल नहीं है बट इन फ्यूचर अगर सब जागरूक न हुए तो एड भी जी सो हालत खराब
0: चलिए जी जानकारी इसी प्रकार होगी कि शोतों से चली रहनी हिन लेकिन चलते तू सब भी इस प्यारे देगी तरीके नारी।

0: शो तो कार्यक्रम हिंदी अपनी के पास समय चल रही है और तो सब 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच तय है जी। कार्यक्रम जो हागो बढ़ते हैं और चंद्र भारद्वाज जी तो है बहुत ही अच्छे विषय पर किया सो बड़ी अच्छी टिप्स किया सो यूथ जो दीती धर्मशाला ने जितने भी यूथ आते सी हो ये टिप्स तो है दीती हिन्न ये जागरूकता भरा कार्यक्रम तो है बनाऊ हाँ असुसोगी तुंदा धन्यवाद करनू हाँ। गंदे गंदे क्या है कुछ एक खास संदेश है जो अपने यूथ जो तो है देना चाहते हैं सो जरूर दे दिया
1: जी। बिल्कुल सचिन जी लास्ट में मेरा संदेश है यूथ जो तो खरे पढ़ लिखन बढ़िया कसरत करन व्यायाम करन अपने शरीर को ठीक रखन स्पोर्ट्स की किनारी ज्यादा ध्यान दें खेल कूद के प्रति रुचि जो बढ़ावा तुसे देन ते चिट्टे जैसे नशे थो दूर रहन अते कोई रहंदा कोई तुझे लगता भी तुंदी यारीकारी में कि ये बंदा संदिग्ध है या दे ये चिट्टा का सेवन करता या करवाओ करता कोई ऐसी तो ठीक रिपोर्ट जरूर करन काउंसलिंग करन समझान सब भी हो ताकि मिलजुल के सभी प्रयास हिंदा रहा तो सभी अह मिलजुल कर अच्छे समाज का निर्माण करन अते अपना जो यूथ है तो सही जगह जो है लेकर गान ताकि यूथ इन देश का भविष्य है हिमाचल में भी इनका यूथ बहुत एक्टिव है अते यूथ ठीक बोला तो इन्हें वाला भविष्य इनका ठीक रहता और इन ग्रां रहा इन शहर रहा इन हिमाचल का जो है सो विकास होना अते हिमाचल अच्छी जगह पुजना इनका जो चल रहा हिमाचल अगर यूथ ठीक रहता तो यूथ जो मेरा ये संदेश कि आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और चिट्टा मुक्त रहें। धन्यवाद।
0: तो उम्मीद करते हैं श्रोतों इतनी जागरूकता भरा संदेश तो है सब भी होना भुना और इस संदेश पर तो है खरे उतरे भुने चंद्र भारद्वाज जी तुंदा वेड़ी गुंजन में तो है आए तो है अपना कीमती समय देता तुंदा उन तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद सचिन कपूर एंड धन्यवाद रेडी गुंजन टीम थैंक यू सो मच समय समय पर ही हर महत्वपूर्ण विषय जो है आवाज चुकते रहते हैं चुकते रहने समाज जागरूक करते रहते थैंक यू सो मच। जय हिंद जय हिमाचल।
0: नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सुखू पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी तत्काल कम नहीं होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। हिमाचल के लिए डायरिया व हेपेटाइटिस ए बड़ी चुनौती। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हर पांचवा व्यक्ति यौन रोग प्रभावित। अग्निवीर योजना से घटे नौकरी के मौके, 800 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। अब समाचार विस्तार से।

जिला कांगड़ा के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों के धर्मशाला में रखे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आत्मनिर्भर पंचायतों के साथ साथ आत्मनिर्भर प्रदेश बनाए जाने की नींव रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायतों के विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की बड़ी घोषणा की, जिससे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों में भारी उत्साह देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में कमी आएगी। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर कई चीजों का असर पड़ता है, जिसमें कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में संक्रामक रोगों के प्रकोप पर हुए शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन में सामने आया है कि प्रदेश में डायरिया और हेपेटाइटिस ए सबसे उभर कर जो है वो सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियां, जल स्रोतों की स्थिति, मानसून और स्थानीय स्वास्थ्य ढांचा रोग प्रकोपों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया है कि अधिकांश प्रकोप मानसून और मानसून के बाद के महीनों में हुआ। वर्षा के दौरान जल स्रोतों के दूषित होने तथा संक्रमण फैलाने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोग गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं। चंबा के बांगी, भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किए गए अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति बीते 1 वर्ष के दौरान किसी न किसी एसटीडी सिंड्रोम से प्रभावित रहा। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि संक्रमण का प्रसार केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता के अभाव, सामाजिक झिझक, असुरक्षित यौन व्यवहार और जांच को सीमित व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 247 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए प्रतिदिन कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में 250 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 407 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। हिमाचल प्रदेश देश में वनाग्नि के सर्वाधिक घटनाओं वाला राज्य बन गया है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच राज्य में सर्वाधिक 10,136 वनाग्नि घटनाएं दर्ज की गई। हर साल वनों की आग की घटनाएं हो रही हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। ये मॉडल जंगलों में आग लगने की संभावनाओं का पहले से आकलन कर सकता है। प्रतिष्ठित शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये अध्ययन प्रकाशित हुआ। ये अध्ययन एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने किया है। इसमें नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद से पहली बार रूस पर बड़े हमले किए। एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद मॉस्को के हवाई अड्डों पर व्यावसायिक उड़ानें रोक दी गई। रूसी अफसरों ने भी पुष्टि की कि ये 4 वर्ष में हुए

सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इनमें से 200 को मॉस्को के पास पहुंचने पर रोका गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक सहायता राशि का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को पंचायत स्तर पर सत्यापन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आवेदन सत्यापन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायतों के माध्यम से होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब महिलाएं अपना आवेदन सीधे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार ये परीक्षाएं आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। 5वीं कक्षा की पुनः परीक्षाएं 3 जुलाई से 7 जुलाई तक संचालित की जाएंगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेंगी। श्री सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य सुधारों को लेकर सरकार ने चिकित्सकों के साथ विस्तृत चर्चा की। आने वाले महीनों में वो स्वयं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करेंगे और चिकित्सकों से संवाद कर स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार करेंगे। उनका कहना है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें एम्स नई दिल्ली के स्तर का बनाया जा रहा है। राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उनका ये भी कहना है कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां के क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को भी उन्नत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग उठाई है। महासंघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आवश्यक कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है। नीट की परीक्षा 21 जून को कांगड़ा जिला के 12 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि विशेष रूप से सक्षम परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा 6:20 तक समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से अपील की कि समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं, ताकि एंट्री गेट पर किसी तरह की भीड़ ना लगे। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे तथा जैमर लगाना भी सुनिश्चित किया जाएगा और परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ समस्त परीक्षार्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तथा इसके उपरांत अपने घर लौटने के लिए HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता का कहना है कि ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभ्यर्थी अपनी नीट 2026 प्रवेश पत्र को पहचान पत्र, निवास स्थान तथा परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर श्रोताओ हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो पूरे दो घंटे का सफ़र श्रोताओ आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे हम आपके साथ ढेर सारी बातें और जानकारियाँ साझा, और साथ ही साथ हर बार हम अपने साथ लेकर आते हैं प्यारा सा गीत, इस उम्मीद के साथ कि हमारे श्रोताओं को पसंद आता है। तो श्रोताओं, हम जानकारियाँ तो साझा करेंगे ही, फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नज़र करते हैं। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे संगीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, जब तक मन और तन स्वस्थ रहते हैं तब तक ही धन और सुख सुविधाओं का आनंद हम ले पाते हैं। इसलिए तन और मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करते रहें। ज़रूरी है कि अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। कई बार क्या होता है कि हम आलसी हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब हम उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं और भी ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, या फिर समाज की एक शर्म करते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब कहाँ योग या एक्सरसाइज या कुछ और व्यायाम हम कर सकते हैं, अब जिम्मेदारियां निभाने में जुट जाते हैं। लेकिन शो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर भी हम योग, एक्सरसाइज, ध्यान और फिर सैर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जीवन शैली की बात करें तो बहुत सारे सुख सुविधाएं हमारे जीवन में हैं। इन सुख सुविधाओं के चलते जो है हमें थोड़ा सा मेहनत अपने शरीर के लिए करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शरीर है तो सब कुछ है और शरीर के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी। फिलहाल इस समय हमें मेहनत करनी है अपने श्रोताओं तक प्यारा सा गीत पहुंचाने की, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए एक प्यारा सा गीत आपकी नज़र करते हैं। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने दोस्त आरजे सुमन के साथ। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हमें आप तक पहुंचानी हैं। तो श्रोताओ, स्वस्थ जीवन शैली की हम बात कर रहे थे, स्वस्थ जीवन शैली हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी मशक्क़त कर ली जाए तो हम अपने शरीर से रोगों को दूर भगा सकते हैं। आजकल के समय की बात की जाए और गर्मियों के मौसम की बात की जाए श्रोताओं, तो आजकल बहुत सारे लोगों को आपने सुबह टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए, जिम करते हुए और इसके साथ साथ जुम्बा करते हुए भी देखा है। जुम्बा की बात की जाए श्रोताओं, तो जुम्बा एक हाई एनर्जी फिटनेस डांस वर्कआउट है जो एरोबिक्स और लेटिन डांस जैसा है। ये वजन घटाने और साथ ही साथ शरीर को टोन करने का भी एक बेहद मज़ेदार तरीका है, जिसमें एक घंटे में 350 से 600 कैलोरी तक आसानी से बर्न की जा सकती है। तो श्रोताओं, अपने शरीर के लिए मेहनत तो हम सभी कर सकते हैं और जुम्बा करने के बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर को होते हैं। इससे वज़न कम होता है और पूरे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनको सक्रिय किया जा सकता है और तेज़ी से फैट को भी कम किया जा सकता है। और आजकल के समय में हर कोई चाहता है कि फिट रहा जाए, क्योंकि मोटापा हर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर कोई आज के समय में मोटापे से परेशान है। और जब मोटापे से परेशान होते हैं तो भागते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं और जाते हैं जुम्बा क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो श्रोताओं, जुम्बा में बेहतर कार्डियो भी करवाया जाता है जो दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है और सहन शक्ति भी हमारी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तनाव को कम करता है। डांस करने से शरीर में एंडोर्फिन यानी खुशी का हार्मोन निकलता है और इसके साथ साथ मानसिक तनाव दूर होता है और रहता है हमारा जो मूड है फ्रेश। तो आपके मूड को थोड़ा सा फ्रेश हम भी किए देते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, हम जुम्बा डांस की बात कर रहे थे, तो ये एक एरोबिक डांस फॉर्म है जो साउथ अफ्रीकी डांस यानी धुनों पर बनता है। ये साउथ अफ्रीकी जो है डांस हमारे हम सभी को फिट रखने के काम आता है, और इसका नाम सुनते ही जितना कठिन है उतना ही ये करने में सरल होता है। जुम्बा दूसरे डांस की तरह ही सिंपल होता है। बैली डांस के बाद पूरी दुनिया में बहुत से लोग इस डांस फॉर्म को पसंद करते हैं। ये डांस अगर अच्छी तरह से किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो श्रोताओं, इसकी जानकारी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं फिर से मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, तो आइए इन्जॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ अपनी दोस्त आरजे सुमन के साथ। तो श्रोताओ, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे सेहत की पोटली के बारे में कि किस तरह से हमारी सेहत अच्छी रहती है और क्या क्या तरीके हम सेहत को सही रखने के लिए अपना सकते हैं। जुम्बा डांस की श्रोताओं हम बात कर रहे थे, तो जुम्बा डांस के बहुत सारे फायदे रहते हैं। मोटापा कम करने के लिए अलावा जुम्बा डांस एक फिटनेस प्रोग्राम भी है। जुम्बा के मूवमेंट शरीर के हर पार्ट पर जोर डालते हैं जिससे वह पार्ट टोन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डांस को हर रोज करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्लिम और फिट रहता है और पूरे शरीर का वजन जो है कम हो जाता है। जैसे कमर, जांघ, बट का वजन भी कम किया जा सकता है और इसके साथ साथ बहुत सारी कैलोरी जो है हम बर्न कर लेते हैं। जुम्बा डांस करने से वेट लॉस हो जाता है और साथ ही साथ 500 से 800 कैलोरी लगभग बर्न होती है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। हम अपने जो है हमारा मूड फ्रेश रहता है और फिट एंड फाइन हम अपने आपको रखने के लिए जुम्बा डांस जो है ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं। शोधो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है हम लोग वहाँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी के इस सुहाने से सफ़र में सीखने को मिलती है। तो इसे रेगुलर करने से हार्ट डिसीज़, थायराइड आदि बीमारियों के होने की संभावना जो है कम हो जाती है और साथ ही साथ जुम्बा डांस करने से हमारे शरीर की मसल भी जो है ताकतवर बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ये डांस हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अपने जीवन में आए हैं श्रोताओ, तो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए थोड़ी तो मेहनत हम सभी को करनी होगी। फिलहाल थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लेते हैं अपने श्रोताओं तक ये प्यारा सा गीत पहुँचाने की। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस पर ऐसे गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी हैं। जुम्बा डांस के श्रोता हम बात कर रहे थे, तो जुम्बा डांस के जरिए दुनिया भर में वर्कआउट का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ये वर्कआउट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसमें ना केवल वजन को घटाया जा सकता है, इसके साथ साथ बहुत सारे रोगों को भी अपने शरीर से दूर किया जा सकता है। आज फिटनेस वर्ल्ड में लोग तरह तरह के वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, किसी को जिम जाना पसंद है तो किसी को योग करना पसंद है, किसी को वॉक करना पसंद है तो किसी को डांस करना पसंद है। और डांस में सबसे पहले हमारी बात आज हो रही है जुम्बा डांस के बारे में। तो जुम्बा डांस करने के लिए एक अच्छा ट्रेनर की ज़रूरत होती है, जो सही तरह से हमें गाइड कर सकता है कि किस तरह से डांस किया जा सकता है। श्रोताओ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डांस करने के शौकीन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें डांस करना बिल्कुल नहीं आता है, जिन्हें हाथ हिलाना नहीं आता है, और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आ जाता है उस समय में थोड़ा सा अपने शरीर के साथ हलचल करना भी दिक्कत देता है, थोड़ा सा अपने शरीर में हमें दर्द भी महसूस होती है। तो थोड़ा सा मेहनत की जाए तो हम इस तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। शर्त ये है कि ट्रेनर या फिर वर्कआउट करवाने वाला जो होता है ट्रेनर, वो बढ़िया सा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हर तरह से हमें गाइड करना वाला होना चाहिए। जब वो अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं तो हर काम को हम आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, जब गुरु सिर पे हो तो हर काम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ज़िंदगी के सफ़र में हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उम्र की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। श्रोताओ, हर काम को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और फिर जब धीरे धीरे किसी काम को हम रूटीन में करते हैं तो हर काम अच्छा हो सकता है, बेशक वो जुम्बा डांस ही क्यों ना हो। और फिर डांस करने के तो फ़ायदे होते हैं, इससे खुशी भी मिलती है, हंसी मजाक भी होता है, और हंसते हंसाते जो है ज़िंदगी का सफ़र कब कट जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। तो श्रोताओ, आइए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और रंगीन करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, तो आइए इन्जॉय करते हैं इस प्यारे से म्यूज़िकल ट्रैक को।

श्रोता, दिल तो कह रहा है रुकने के लिए, पर हमें रुकना नहीं है। हमें जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को फिट एंड फाइन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करना है। श्रोता, आज के कार्यक्रम में हम जुम्बा डांस की बात कर रहे थे, तो जुम्बा डांस करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ जुम्बा क्लासेस में मज़ेदार डांस कोरियोग्राफी और कार्डियो मूव्स का बेहतर मेल होता है और इसके साथ साथ पूरी क्लास के दौरान पसीना जो है बहता है। साथ ही साथ अगर हमारा टीचर, हमारा गुरु अच्छा हो, हंसने हंसाने वाला हो, तो काम करने का भी मज़ा आता है और उस समय ऐसा नहीं लगता है कि हम डांस कर रहे हैं या फिर जिम ज्वाइन किया है या फिर जुम्बा ज्वाइन किया है। और हंसते हंसाते हमारा समय भी कम निकल जाता है, हम सभी को पता नहीं चलता है। ये फिटनेस क्लास की शोधों अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इससे बेहतर जो है उपाय हमारे पास कोई नहीं है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है और पूरा शरीर जो है बढ़िया रहता है। वर्कआउट करने से हमारे पैरों, हमारी पीठ, हमारी बाहों, शरीर के अन्य हिस्सों का जो है फैट बर्न होता है और मांसपेशियां जो है सक्रिय हो जाती है। श्रोता, जुम्बा एक ऐसा व्यायाम कार्यशाला है जो पूरे शरीर का वर्कआउट और डांस क्लास दोनों ही हमें प्रदान करता है। इसमें शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, व्यायाम भी हो जाता है और एक तरह से हम खूब सारा इंजॉय भी कर लेते हैं। श्रोता, जुम्बा क्लास में कोरियोग्राफी का पालन करके हम पैरों के जरिए जो है बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, हाथों के जरिए, बाजुओं के जरिए, और इससे मजबूती हमारी मांसपेशियों पर आती है, हड्डियां हमारी मजबूत होती है और साथ ही साथ मसल भी टाइट हो जाते हैं। और डांस फिटनेस की दुनिया में अगर आप नए हो तो एक बार डांस क्लास ज्वाइन करके देखिए कितना मज़ा, कितनी मौज और कितनी मस्ती है। और मस्ती मस्ती में हमारा शरीर ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास श्रोता जब हम जाते हैं मोटी मोटी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एक तो डॉक्टर का बिल देना पड़ता है और दिल उस टाइम हमारा जो है जोर जोर से धड़कता है और टेंशन भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आधी बीमारी जो है हमारी बिल देखकर ही दूर हो जाती है। तो श्रोताओं, अगर चाहते हैं कि डॉक्टर को बड़ा सा बिल ना देना पड़े तो थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत कर लीजिए। तो आइए, जल्दी से गाड़ी भी आपको बुला रही है कि गाड़ी बुला रही है, तो बैठते हैं जुम्बा क्लास की गाड़ी में और चलते हैं सीखने के लिए जुम्बा।

तो गाड़ी तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बुला रही है, और तैयार हो जाइए इस गाड़ी में बैठने के लिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप प्यारे से जीवन का आनंद जो है स्वस्थ रहकर उठाते रहे। श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कुछ स्थानीय जानकारियां कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जिला कांगड़ा के निर्वाचित पंचायत प्रधानों तथा उप प्रधानों के धर्मशाला में रखे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आत्मनिर्भर पंचायतों के साथ साथ आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की नींव रखी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में पंचायतों के विकास कार्य के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके साथ ही साथ उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की बड़ी घोषणा की है, जिससे ग्रामीण जन प्रतिनिधियों में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां। अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा देते हैं कार्यक्रम में विराम और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

जी हाँ ईशो, तो हर किसी को अपनी प्रेम कहानियाँ तो नहीं सुनाई जा सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में कुछ अच्छे दोस्त ज़रूर मिलते हैं, उनके साथ अपने दिल की बात साझी की जा सकती है। तो ईशो, तो अपनी बात और जानकारियों के साथ हम थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं। जानकारियाँ हम जुम्बा की भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रादेशिक, माफ कीजिएगा, स्थानीय जानकारियां कुछ आपके साथ साझा करते हैं, उसके बाद प्रादेशिक समाचार भी हम आपको सुनवाएंगे। तो स्थानीय जानकारियों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी की गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी आएगी। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर कई चीज़ों का असर पड़ता है, जिसमें कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत तक पहुंचाने में लगने वाला समय भी शामिल रहता है। तो श्रोताओं, और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में हम रुकते भी हैं और प्रादेशिक समाचारों की ओर भी जाने का समय हो गया है, क्योंकि साईं के साथ बजने वाले हैं, और थोड़े से समाचार सुन लेते हैं, क्योंकि जीवन में ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, रेडियो से मिले, समाचार पत्रों से मिले, या एक दूसरे से सुनकर मिले, ज़रूर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो फिलहाल सुनते हैं समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के

लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आरजे सुमन, लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में हमने जुम्बा डांस की बात भी की है, और उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जुम्बा के साथ साथ थोड़े अपने शरीर को हाइड्रेट रखने की भी ज़रूरत होती है, तो वर्कआउट करते हुए बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो और नमी पूरी तरह से बनी रहे। और जब नमी शरीर में बनी रहती है तो कहीं ना कहीं हम जो है बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो अब एल्काइन वाटर की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रचलन में है। एल्काइन पानी में नॉर्मल पानी से ज़्यादा पीएच होता है। सामान्य तौर पर सादा पानी में पीएच लेवल 7 रहता है, और साथ ही साथ एल्काइन वाटर में 8 या 9 या इससे ज़्यादा पीएच लेवल रहता है। तो एल्काइन वाटर की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। ये पानी ज़रूर पीना चाहिए, इससे हमारे शरीर में जो है पानी की कमी पूरी हो जाती है, और ये पानी अम्लीयता को कम करने में मदद करता है। और इसमें मिनरल बहुत सारे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है श्रोताओं, आपको ये बता दें कि इसे हमें कांच के बर्तन में बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसे बनाने का तरीका क्या है। काम कोई भी हो श्रोताओ, जब हमें समझ में आ जाता है तो हर काम जो है आसान लगता है। इसे बनाने के लिए कांच का एक बर्तन लेना है, उसमें हम खीरे के कुछ टुकड़े काटकर डाल सकते हैं, सीजनेबल फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे सेब के कुछ टुकड़े डाल दिए, पुदीना डाल दिया, और नींबू की स्लाइस काटकर डाल सकते हैं। रात भर उसे रहने दें और सुबह उस पानी का सेवन करें। इससे हमारे शरीर में अम्लता की समस्या को कम किया जा सकता है। एल्काइन पानी का सेवन ज़रूर करें, और पेट की जलन की समस्या से भी हमें राहत दिलाता है। इसके साथ साथ असंतुलित पीएच मान को संतुलित करता है। एल्काइन पानी शरीर में पीएच मान को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे शरीर में कई तरह की प्रक्रियाएं बेहतर तरीके से कार्य करती हैं। डिहाइड्रेट में सहायता करता है, और एल्काइन पानी शरीर को जल्द ही अधिक तरीके से हाइड्रेट करता है। तो श्रोताओं, बहुत सारी जानकारियाँ अभी भी आपके साथ साझा करनी है। थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नज़र करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ, शोध और हाथों की चंद लकीरों में बहुत कुछ लिखा होता है। हमारी किस्मत के बारे में लिखा होता है, ज़िंदगी के बारे में लिखा होता है, शादी विवाह के बारे में लिखा होता है और हमारे उज्ज्वल भविष्य को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं ज्योतिष द्वारा बताई जाती हैं। तो श्रोताओं, अपनी इन जानकारियों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम एल्कलाइन वाटर की बात कर रहे थे, हाइड्रेशन में सहायक होता है और एल्कलाइन पानी शरीर को जल्द ही हाइड्रेट करता है। एल्कलाइन पानी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। ये आयु वृद्धि और कई बीमारियों के बचाव में भी मददगार साबित होता है। कुछ लोग श्रोताओं मानते हैं कि एल्कलाइन पानी वजन घटाने, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने और चर्बी की तब्दीली में सहायता करता है और साथ ही साथ इसे पीने से भूख कम लगती है, जिससे वजन नियंत्रण में भी मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट ये पानी फ्री रेडिकल्स के मुकाबला करने में मदद करता है, जो शारीरिक तनाव और उम्र बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो श्रोताओं, कितने सारे गुण इस पानी के हैं, तो इसे बनाएं और इसे ज़रूर पिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने शरीर के लिए। हम थोड़ी सी जहाँ मेहनत कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छी डाइट ज़रूर फॉलो करें। अच्छी डाइट के साथ साथ हमें पानी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। दिन में कम से कम हमें 8-10 गिलास पानी तो ज़रूर पीने चाहिए। इससे ज़्यादा भी अगर थोड़े आप पी लें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती हैं और साथ ही साथ त्वचा में नमी भी बनी रहती है। तो श्रोताओं, अपने खान पीन पान का भी पूरा पूरा ख्याल और ध्यान रखें। मौसमी फल और सब्जियों को अपनी थाली में, अपनी प्लेट में ज़रूर शामिल करें और हाँ, थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत ज़रूर करते रहे। थोड़ी सी मेहनत श्रोताओं हम भी कर लेते हैं गीत आप तक पहुंचाने की, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नज़र करते हैं। तो आइए सुनते हैं मिलकर इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोताओं, आपने इस प्यारे से गीत को सुना, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। और बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज भी हम तक पहुंच रहे हैं कि उन्हें लवली सॉन्ग लगा, उन्हें सॉन्ग पसंद आया। श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ हम आते हैं कि हमारे श्रोताओं को गीत पसंद आए और जानकारियाँ भी पसंद आए। श्रोताओं, इस सराहना के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम में फिर से हम थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं एल्का इन्वर्टर के बारे में। तो ये बेहतर हाइड्रेशन का काम करता है और आजकल के समय में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और अब थोड़ा सा कई बार श्रोताओं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये क्या है, कैसे काम करता है। इंसान का शरीर नेचुरल एक स्टेबल पीएच बैलेंस बनाए रखता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना होता है कि स्ट्रेस, प्रदूषण और ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना जैसी लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में एसिडिटी बन जाती है। शरीर में ज़्यादा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और छोटे पानी में के क्लस्टर के जरिए बेहतर हाइड्रेशन में मदद करता है। एल्कलाइन मिनरल जो है हमारे शरीर के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए इसे रोज़ाना हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इससे जो है एसिडिटी कम होती है। तली हुई चीज़ें हमें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चीनी और प्रोसेस्ड स्नैक्स भी नहीं लेने चाहिए। ये पानी पीने से एसिडिटी कम होती है और एल्कलाइन पानी सबसे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इससे एथलीटों या उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ज़रूरी मिनरल शोधा इसमें पाए जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि इस पानी में नेचुरल कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम जैसे मिनरल होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य, नब्ज फंक्शन और ओवरऑल सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें ज़्यादा पीएच कुछ लोगों की एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें एसिडिटी या सीने में जलन होती है। और साथ ही साथ श्रोताओं, मन तो नहीं कर रहा है कि आपसे जानकारी साझी ना की जाए, मन करता है जितना समय है थोड़ी सी बात और कर ली जाए। तो

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं, क्योंकि अभी समय हमारे पास बाकी है। तो शरीर को हाइड्रेट रखना श्रोताओं बेहद ज़रूरी होता है। जीन जे स्किन से लेकर स्टाइल तक हर उस चीज़ का ध्यान रखता है जो उसे कूल बनाता है। श्रोताओ, हम एल्काइन वाटर के साथ साथ लोडेड वाटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी हमारी त्वचा को बेहतर करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इस पीढ़ी का सबसे अहम काम जो है लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बनाकर उभर रहा है, इसमें लोडेड

जो इस समय इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और जिन जी इसके लाभ गिनवाने में पीछे नहीं है। तो क्या है ये पानी, थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि अल्कलाइन वाटर का तो सुन लिया, अब ये लोडेड वाटर क्या है। ये ही साथ मिलते जुलते ही दोनों चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। लोडेड वाटर एक नया हाइड्रेशन ट्रेंड है जो जेन जी के बीच खास लोकप्रिय है। ये साधारण या स्पार्कलिंग पानी है जिसमें नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल, प्री बायोटिक या ताज़े फल जैसे हेल्दी एग्रीडियंट्स पाए जाते हैं। ये घर पर नींबू पानी, पुदीना या फलों के साथ बनाया जाता है, जो बाज़ार में भी रेडीमेड एफ्यूज तथा फंक्शनल वाटर मिलते हैं। तो शो तो घर पर हम आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, जैसे हमने पहले भी बात की, सिर्फ नाम में बदल गए हैं लेकिन बनाने का तरीका तो सेम ही है। इसे भी कांच के गिलास में कुछ खीरे के स्लाइस, नींबू, अदरक का टुकड़ा या फिर पुदीने की पत्तियाँ और कुछ फल जैसे सेब का टुकड़ा काटकर हम रात भर इसे ढक कर रख दें, सुबह उठकर इस पानी को पीते रहें तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है नमी बनी रहती है, साथ ही साथ त्वचा भी साफ होती है और चमकदार होती है। तो श्रोताओ, छोटे छोटे उपाय करके हम अपने आप को शरीर रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे खुद के लिए अच्छी है उसे करने में तो फ़ायदा ही होता है। तो श्रोताओ, इस फायदे का लाभ उठाएँ। और फिलहाल हम आप तक पहुंचा देते हैं एक और कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। गीत से पहले थोड़ा सा लेते हैं एक अंतराल।

शतोगीत तो आपने सुन लिया, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। और इन जानकारियों और गीतों के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते एक प्यारी सी कहानी। श्रोताओ, कहानी इस तरह से है कि ज़िंदगी का सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोता आत्महत्या के बारे में भी सोच लेते हैं। तो आत्महत्या करना बुजदिलों का काम होता है श्रोताओ, इस तरह का विचार अपने मन में हमें बिल्कुल नहीं लाना है। ज़िंदगी का सफ़र में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए नदी में जा रहा था और वो डूबने ही वाला था कि महाराज एक आगे उन्होंने आकर उसे बचा लिया और उससे पूछा, आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, अपनी जान देने जा रहा हूँ महाराज, क्योंकि मैं कर्जे में डूब गया हूँ। और महाराज ने कहा कि तुम्हारा कर्जा तो अभी मैं चुका दूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे पास एक अनमोल खजाना है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ तुम्हारे कर्जे को चुका देता हूँ। महाराज उस व्यक्ति को लेकर सेठ जी के पास चल पड़े और फिर सेठ जी के कान में उन्होंने कुछ कहा। सेठ जी ने कहा हाँ, गर्दन हिलाते हुए, और बोले कि मैं 2 लाख रुपए दे दूँगा। महाराज ने फिर से उसके कान में कुछ कहा और फिर सेठ जी ने फिर से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं 2 लाख और दे दूंगा। व्यक्ति घबरा गया, उसने सोचा ये क्या बातचीत कर रहे हैं, इशारों में या कानों में, मुझे समझ नहीं आ रही है। उसने कहा, मुझे बताओ किस चीज़ की सौदाबाजी हो रही है महाराज? महाराज ने कहा, तुम्हारी एक आंख की बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी एक आंख 2 लाख में बिक रही है और दूसरी आंख के भी 2 लाख मिल रहे हैं, कुल मिलाकर तुम्हें 2 आंखें बेचने के 4 लाख मिल जाएंगे, जिससे तुम अपने कर्ज चुका सकते हो। इसी बीच सेठ जी बोल उठे। सेठ जी ने कहा कि तुम अपने किडनी, लीवर, दिल भी दे सकते हो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। आदमी घबरा गया और बोला, किस बात की सौदेबाजी, मैं अपने जो शरीर के अंग है वो दान करने वाला नहीं हूँ, मैं अपना शरीर क्यों बेचूं? महाराज ने कहा, तुम्हें तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाना है, तुम तो आत्महत्या करने जा रहे थे, तो ये शरीर तुम्हारा किस काम का है, तुम तो अपने शरीर को ख़त्म करने ही वाले थे, तो अब अपने शरीर से इतना प्यार और इतना मोह क्यों? उसकी ये बात सुनकर जो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला था, उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपकी बात समझ गया, जब मैं अपने शरीर के सभी अंगों को दान कर दूंगा तो फिर मेरा जीवन किस काम का, मेरा जीवन तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना इस शरीर का जीते जी मैं लाभ उठाऊं और थोड़ी मेहनत करूं और मेहनत करके अपने सारे कर्जे चुका दूँ। जो श्रोताओ, कर्जे हर किसी के सिर चढ़ जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ज़्यादा ही कमाता हो, कई बार क्या होता है कि कम कमाने के बावजूद आजकल के समय में खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो कर्ज भी हम एक दूसरे से ले लेते हैं या फिर बैंक से कभी ले लेते हैं, तो अपने मन में इस तरह का विचार नहीं लाना है, बल्कि मेहनत करनी है और बचत करनी है। छोटी छोटी बचत से बड़ी बचत बन जाती है, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है, और जब हम बचत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है, जिससे हम अपने कर्जों को उतार सकते हैं। धीरे धीरे करके हिम्मत रखिए, सब कुछ जीवन में संभव है। तो इसी प्यारी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि ज़िंदा दिली से इस जीवन को जीना है। और थोड़ा सा हम भी कार्यक्रम में बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हाँ, शोधो पल भर के लिए कोई प्यार कर ले तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और प्यार जीवन में बहुत ही रंग भर देता है। प्यार जीवन में ना हो तो जिंदगी नीरस सी लगती है, और प्यार अगर जिंदगी में हो तो जीवन जो है बहुत ही रंगीन लगता है। तो ये थोड़ा सा रंग हम भी भरते हैं और आप तक पहुँचाते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45, तो आइए आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान। पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार, डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान।

0: स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा, परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ युवा लाभार्थियों से संवाद भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनका कौशल विकास किया जा रहा है।
1: योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है।
0: इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सांसद सुरेश कश्यप ने भी समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने 8.25 करोड़ रुपए से बनने वाले नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और सोलन जिले के नालागढ़ में प्रदेश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन योजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश विश्वविद्यालय को इस दिशा में नए शोध करने चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर आज नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। शांडिल ने बताया कि टीबी उन्मूलन की दिशा में हिमाचल तेजी से आगे बढ़ा है और उच्च जोखिमों वाले गांवों में संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच और टीबी मरीजों की देखभाल जैसे मापदंडों में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के बगैण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इन पर 1.12 करोड़ रुपए की लागत आई है। रोहित ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है और पहले चरण में राज्य के 151 स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में बगैण स्कूल को भी CBSE से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े 15,000 पदों में से 9,000 पद भर दिए हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को टालने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 12 जिलों में से 10 में भाजपा अपने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार के डर से इनके चुनाव नहीं करवा रही है।
2: वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है उसका जनादेश आया। अरे जब पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो वो अपने आप में एक सिंबल की तरह ही देखा जाता है। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं, वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के।
0: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने किशाऊ बांध और रेणुका बांध जैसे मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था और उसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इसका बेवजह श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
2: इतना प्रभावी ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है, शाह डैम को लेकर के, रेणुका डैम को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के वही आधार बना, उसी बात को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष आगे रखा और धन्यवाद उनको करना चाहिए केंद्र की सरकार का।
0: राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। HRTC चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
3: 3.5 साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है, 75 महीना का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है इन्होंने वो नहीं दिया। 4-4 वर्दियां हमारी ड्यू है वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
0: राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में अनुकंपा के आधार पर 3 लोगों को नौकरी प्रदान की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इन लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी गई नौकरी दुख की घड़ी में 3 परिवारों का सहारा बनी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में लगभग 7,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में दृष्टिबाधित एसोसिएशन और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार, DBT के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा, परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ की ढेर सारी जानकारियां साझा, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। इन जानकारियों के साथ साथ हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सुखू पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी तत्काल कम नहीं होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। हिमाचल के लिए डायरिया व हेपेटाइटिस ए बड़ी चुनौती। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हर पांचवां व्यक्ति यौन रोग प्रभावित। अग्निवीर योजना से घटे नौकरी के मौके, 800 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों के धर्मशाला में रखे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आत्मनिर्भर पंचायतों के साथ साथ आत्मनिर्भर प्रदेश बनाए जाने की नींव रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायतों के विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की बड़ी घोषणा की, जिससे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों में भारी उत्साह देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल डीजल व गैस की कीमतों में कमी आएगी। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर कई चीजों का असर पड़ता है, जिसमें कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में संक्रामक रोगों के प्रकोप पर हुए शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन में सामने आया है कि प्रदेश में डायरिया और हेपेटाइटिस ए सबसे उभर कर जो है वो सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियां, जल स्रोतों की स्थिति, मानसून और स्थानीय स्वास्थ्य ढांचा रोग प्रकोपों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया है कि अधिकांश प्रकोप मानसून और मानसून के बाद के महीनों में हुआ। वर्षा के दौरान जल स्रोतों के दूषित होने तथा संक्रमण फैलाने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोग गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं। चंबा के पांगी, भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किए गए अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति बीते 1 वर्ष के दौरान किसी न किसी एसटीडी सिंड्रोम से प्रभावित रहा। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि संक्रमण का प्रसार केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता के अभाव, सामाजिक झिझक, असुरक्षित यौन व्यवहार और जांच को सीमित व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 247 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए प्रतिदिन कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में 250 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 407 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। हिमाचल प्रदेश देश में वन अग्नि के सर्वाधिक घटनाओं वाला राज्य बन गया है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच राज्य में सर्वाधिक 10,136 वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई। हर साल वनों की आग की घटनाएं हो रही हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। ये मॉडल जंगलों में आग लगने की संभावनाओं का पहले से आकलन कर सकता है। प्रतिष्ठित शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये अध्ययन प्रकाशित हुआ। ये अध्ययन एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने किया है। इसमें नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद से पहली बार रूस पर बड़े हमले किए। एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद मॉस्को के हवाई अड्डों पर व्यावसायिक उड़ानें रोक दी गई। रूसी अफसरों ने भी पुष्टि की कि ये 4 वर्ष में हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था।
रूसी अफसर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, इनमें से 200 को मास्को के पास पहुंचने पर रोका गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक सहायता राशि का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को पंचायत स्तर पर सत्यापन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आवेदन सत्यापन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायतों के माध्यम से होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब महिलाएं अपना आवेदन सीधे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए पांचवी और आठवीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार ये परीक्षाएं आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। पांचवी कक्षा की पुनः परीक्षाएं 3 जुलाई से 7 जुलाई तक संचालित की जाएंगी, जबकि आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेंगी। श्री सोखो ने कहा कि स्वास्थ्य सुधारों को लेकर सरकार ने चिकित्सकों के साथ विस्तृत चर्चा की। आने वाले महीनों में वो स्वयं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करेंगे और चिकित्सकों से संवाद कर स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार करेंगे। उनका कहना है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें एम्स नई दिल्ली के स्तर का बनाया जा रहा है। राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उनका ये भी कहना है कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को भी उन्नत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग उठाई है। महासंघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आवश्यक कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है। नीट की परीक्षा 21 जून को कांगड़ा जिला के 12 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि विशेष रूप से सक्षम परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा 6:20 तक समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से अपील की कि समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाए, ताकि एंट्री गेट पर किसी तरह की भीड़ ना लगे। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे तथा जैमर लगाना भी सुनिश्चित किया जाएगा और परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ समस्त परीक्षार्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तथा इसके उपरांत अपने घर लौटने के लिए HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता का कहना है कि ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभ्यर्थी अपने नीट 2026 प्रवेश पत्र को पहचान पत्र, निवास स्थान तथा परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।